जो लोग काफिर हुए और काफिर ही मरे, ऐसों पर अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की सबकी लानत, वो हमेशा इसी लानत में गिरफ्तार रहेंगे। उनसे न तो अजाब हल्का ही किया जाएगा और न उन्हें कुछ मोहलत मिलेगी। और लोगों, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उस बड़े मेहरबान और रहम वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।

जो लोग अल्लाह की किताब से उन आयतों और हिदायतों को जो उसने नाजिल फरमाई हैं छुपाते और उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनफात हासिल करते हैं, वो अपने पेटों में महज आग भरते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह कयामत के दिन न कलाम करेगा और न उनको गुनाहों से पाक करेगा, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही और बख्शिश छोड़कर अजाब खरीद लिया। ये आतश जहन्नम की कैसी बर्दाश्त करने वाले हैं। ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब सच्चाई के साथ नाजिल फरमाई और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ किया वो जिद में आकर नेकी से दूर हो गए हैं।

كفر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن

دی خوشبو مٹھاس چون باغ نبی دے پھلا دی خوشبو مٹھاس چون ورنہ

बंदे दा पुत्र बनवन उल्टी नगाल कर बेशक सवाल कर खुज नाल कर बंदे दा पुत्र बनवन उल्टी नगाल कर नहीं ते मुमकिन हे जिंदी का नहीं ते मुमकिन हे जिंदी का दा बिछी जान।

0: फकीर अहमद 0-306-16-23-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 आई 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فانما الصدقات للفقراء والمساكين صدقات تو فقراء و مساكين کے لیے ہیں والعاملین علیہا اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے عاملین عامل کی جمع ہے کام کرنے والے عمل کرنے والے زکاة وصول کرنے والے

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
3: ऑफिस जी मिरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मिरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

हूंदी आहे। असां शौरी या लाशौरी तौर ते हिन सां जेको बि सुलूक रवा रखूं था उहो शायदि असांजी यादगिरीअ में पंहिंजी असुल शिकल सूरत में महफ़ूज़ न हुजे, पर ज़िंदगी पाण उन खे हरगिज़ न विसारींदी आहे। कंहिं ख़ासि मुदे पूरे थियण खां पोइ असांखे इंतिहाई ईमानदारी ऐं ख़ुलूस सां उहो समर वापसि ॾियणो शुरू कंदी आहे। इहो समर पंहिंजे झोलीअ में ॾिसण खां पोइ मालूम थींदो आहे त असांखे को हक़ नथो पहुचे, त बदनतीअ सां कंडा पोखे उन मां सुकून ऐं अमुन जे गुलनि जी पोख कयूं। पर ॻाल्हि इहा आहे त असां अहिड़ी ॻाल्हि कयूं ऐं सुहिणी ॻाल्हि कयूं जंहिंसां पंहिंजी दिलि ठरी पए।

जी साईं मुंहिंजा हूअं त दोस्तनि सां सुठो ऐं लाॻापो ज़हनी दबाव सां छोटकारे जो सबबु हूंदो आहे, पर ताज़ो माहिरनि चयो आहे त औरतूं जेकॾहिं पंहिंजे सिहत खे बहितर बणाइण चाहिनि थियूं त खेनि घुर्जे त पंहिंजे साहेड़ियुनि सां दोस्तीअ खे वधीक घाटो करे वठनि। ऐं ताज़ो हिकु तहक़ीक़ में चयो वियो आहे त जॾहिं औरतूं पंहिंजनि सुठियुनि साहेड़ियुनि सां सुठो वक़्तु गुज़ार थियूं त उन्हनि में पंहिंजो ऑक्सीटोसिन नाले हार्मोन वधे थो, ऐं उहो हार्मोन ॿियनि ते भरोसो करणु ऐं दोस्तीअ जे जज़्बे में वाधारो करे थो। उन करे मुहबत जो हार्मोन बि उनखे चयो वञे थो। असुल में दोस्तनि सां सुठो वक़्तु गुज़ारणु ज़हनी ऐं दिमाग़ी सिहत लाइ कराइतो आहे। हिन तहक़ीक़ में इहा बि ॻाल्हि साबित थी चुकी आहे त मज़बूत समाजी लाॻापा कंहिं शख़्स जी उमिरि में वाधारो करे सघनि था, जॾहिं त काफ़ी बीमारियूं जेके आहिनि ज़हनी दबाउ जेको आहे उन जो घटिताव थिए थो। त कोशिशि कयो पंहिंजे दोस्तनि वेझो रखो, सुठनि दोस्तनि सां लाॻापो वधीक थियण सां इंसानी सिहत बहितर थिए थी। त पाण सहेलियुनि सां जेको आहे सो बसि जीअं हाणे तव्हां कलाम ॿुधो पिया बैकग्राउंड में, इंजॉय कयो।

जटादार अमुन जो क़याम कश्मीर मसले के हल से जुड़ियल है। 5 अगस्त से भारत सा जा एक तरफा कदम आलमी कानून की भनकड़ी है। अड़ा कदम कश्मीर के कानूनी हैसियत खत्म नथा करे सकन। 7 साल गुजरण बावजूद कश्मीरी अवाम जो अज़म कमजोर ना थो। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के इखलाकी सियासी ए सफारती हिमायत जारी रख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चवाए तो 5 अगस्त 2019 से भारत कश्मीर के आइनी ए कानूनी हैसियत तब्दील करने की कोशिश कई। भारत जा अड़ा एक तरफा कदम आलमी कानून ए सलामती काउंसिल जो ठहराव की भनकड़ी है। दखण एशिया में अमुन इस्तकाल लाए कश्मीर मसले जो हल जरूरी है। पाकिस्तानी हुकूमत ए कौम कश्मीरी अवाम से गड बीठल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फिजाया बहरिया के सरबराहन जो योम एहतसाल से वलारियल कश्मीर के अवाम से बधिए जो इजहार। हथियारबंद फौज जो जम्मू कश्मीर के अवाम से यकजहती जो इजहार। वलारियल कश्मीर में भारतीय फौज के घेराव। इंसानी हकन के संगीन भनकड़ी ए भारतीय सिक्योरिटी फोर्सिस के कब्जे से गणती जो इजहार। ISPR मौजूद कश्मीर मसले जो हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश ए गडियल कौमन की सलामती काउंसिल जो ठहराव मुताबिक हुजन घुर्जे। पाकिस्तानी अवाम हथियारबंद फौज भारत के गैर कानूनी कब्जे हेठ जम्मू ए कश्मीर के शहीदन के भरपूर खराज अकीदत पेश कन था। भारतीय चिट डियारींदड़ बयान ए जहरियाणो अमल खिते में अदम इस्तकाम जो सबब बनजी रो है। पाकिस्तानी अवाम ए पाक फौज कश्मीर की आज़ादी के जायज़ ए हकीकी जिदोजहद में कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल है। 5 अगस्त 2019 से भारत कश्मीर के आइनी हैसियत खत्म कर आलमी कानून की भनकड़ी कई। योम इस्तेसाल कश्मीर दखण एशिया की तारीख जो कारो ही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम जो योम इस्तेसाल कश्मीर के मौके से पैगाम संदस चवण है तो कश्मीरी अवाम गुजरियल केतर ही लहाकन का पैंजे हक खुद इरादियत लाए बेमिसाल कुर्बानियों दे रही है। भारतीय से रियासती जबर इंसानी हकन जो भनकड़ियों कश्मीरी अवाम के जज्बे के कमजोर नथी करे सकन।

मोहसिन नकवी खां पोइ हिकु ॿियो वफ़ाकी वज़ीर बि नवनि सूबनि जो वॾो हामी निकितो। दिफ़ाई पैदावार वारे वफ़ाकी वज़ीर रज़ा हयात चयो आहे त इंतिज़ामी यूनिट्स सां गवर्नर्स ऐं हालतूं बहितर थियण सां गॾु वफ़ाक वधीक मज़बूत थींदो। वज़ीर आज़म तोणे मोहसिन नकवी केॾांहुं बि न पिया वञनि, शहबाज़ शरीफ़ ई नवां सूबा ठाहींदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम।

0: और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर।
1: 0300-885-69।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
5: 0301-399-2836।
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-1565-724।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94
5: खुशखबरी

जी समेन प्रोग्राम रोशन सुबुह में वापसि अची चुका आहियूं ऐं असांजी प्रोग्राम जो सुवालु आहे त पाकिस्तान जो क़ौमी गुल चमेली आहे उनखे ॿिए कहिड़े नाले सां सॾियो वेंदो आहे त तव्हां असांखे सुवाल जो सही जवाबु असांजे सेंड करे सघो था एस एम एस ज़रिए एस एम एस करण जो आसान तरीक़ो आहे मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो उते तव्हां एल आर के लिखी स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सुवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां 888 ते सेंड करे सघो था ऐं साईं मुंहिंजा तव्हां फेसबुक जी आई डी जी एफ एम 88 जी आई डी यानी जेको फेसबुक जो पेज आहे असांजो तव्हां उन ते बि पंहिंजो सुवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था ऐं तव्हां असांखे सुवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था असांजे मोबाइल नंबर ते जेका असांजे स्टूडियो में आन आहे ऐं असांजो नंबर आहे 0332-1322-88 साईं मुंहिंजा ॻाल्हि कंदासीं जज़्बात हिकु अहिड़ी कैफ़ियत आहे जंहिंमां सिर्फ़ु नुक़सानु हासिलु थी सघे थो छो त जंहिं वक़्त बि जज़्बात इंसान मथां हावी थी वेंदा आहिनि तंहिं वक़्तु इंसानु उभरो थी पवंदो आहे ऐं उभराए में अहिड़ा फ़ैसिला थी पवंदा आहिनि जंहिंजा नतीजा सुठा न आहिनि निकिरंदा दुनिया जा सभु ॾह ऐं अकाबर हिन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त जेकॾहिं को माण्हू जज़्बात में हुजे त उन खां का बि राय न वठिजे उन सां को बि फ़ैसिलो उन खां न कराइजे नफ़्सियात जा माहिर चवनि था त जज़्बात जो ॿियो नालो चिरैप आहे छो त चिरैप वारे चिरैप अहिड़ी कैफ़त आहे जंहिंमें न नफ़े जी ॼाण पवंदी आहे न नुक़सान जी ॼाण तंहिं करे हरदम पंहिंजे जज़्बात ते कंट्रोल करणु घुरिजे ऐं कॾहिं बि उन कैफ़ियत जी ताबियो न थीजे पर जज़्बात खे पंहिंजे हुकुम हेठि रखिजे जंहिंमां असांखे पाण खे फ़ाइदो मिले।

साईं मुंहिंजा अलाह साईं जा एहसान मालिक जा कुर्ब कुदरत पारां ज़बान जहिड़ो बेबाह तोहफ़ो अलाह साईं अता कयो आहे ऐं ॻाल्हाइण लाइ पंहिंजो तमामु बहितरीन ज़बान जहिड़ो तोहफ़ो ऐं कननि जो तोहफ़ो मिलियो त ॿुधो ऐं सुठियुनि ॻाल्हियुनि ते अमल बि करियो पर ई पचार खे हिकु कन खां ॿुधी ॿिए कन खां कढी छॾियो ऐं अखियुनि जहिड़ी नेमत ॾिनई त अखियूं खोले ॾिसो सच खे सुञाणो सूंहं जा साथीपण जो कुदरत जे हुसन जी वाखाण करियो अखियूं जेकी ॾिसण सां गॾु ॻाल्हाईंदियूं बि आहिनि अखियूं जॾहिं ॻाल्हाईंदियूं आहिनि तॾहिं अखियूं ई उहे ॻाल्हियूं सम्झंदियूं बि आहिनि अखियूं प्यार मुहबत जा सनिहा ॾियण लाइ बि ॻाल्हाईंदियूं आहिनि त कावड़ ऐं किरोध जो बि इज़हार करे वठंदियूं आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं त लफ़्ज़नि जा तीर बि वसाईंदियूं आहिनि ऐं अखियुनि जूं सदाई सम्झ में न ईंदड़ ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि तॾहिं त चयो वियो आहे त अखियुनि खे आहिनि अजब जहिड़ियूं आदतूं छा साईं जो बेत आहे त अखियुनि खे आहिनि अजब जहिड़ियूं आदतूं सूर पराए साथ जा वञो विहाइनि उते लहूं लाहिनि जिते हाज़त नाहे हथियार जी।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 10 AM to 5 PM ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुद्ध

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
3: जहाँ उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
1: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो, मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94
2: Studio, Season 15.

जी समय ने प्रोग्राम रोशन सुबुह में वापसि चुका आहियूं ऐं असांजो प्रोग्राम रोशन सुबुह में जेको अव्हां खे असां सवाल नो सी अॼु त पाकिस्तान जो जेको क़ौमी गुल आहे चमेली उन जो ॿियो नालो कहिड़ो सॾियो वेंदो आहे त असांजे अॼु सवाल जो जेको सही जवाबु आहे उहो आहे यास्मीन या जास्मीन। जी हा असांजे पंहिंजे सवाल जो जेको सही जवाबु आहे उहो नालो आहे यास्मीन या जास्मीन। काफ़ी दोस्तनि पंहिंजे प्रोग्राम में सही जवाब ॾिना आहिनि कुझु ग़लति बि न आहिनि ऐं हुनजा नाला बाद में खणंदासीं। पहिरियों अव्हां ताईं पंहिंजो सांवल मीरालीअ जो ग़ज़ल अव्हां ताईं पहुचाईंदासीं ऐं हिकिड़ो कलाम बाद में तव्हांजा नाला खणंदासीं। ऐं सांवल मीराली चवे पियो त मुर्की नेण मिलाए दिलि खणी वियो आहे, मुर्की नेण मिलाए दिलि खणी वियो आहे, ज़ोरीअ कीअं अलाए दिलि खणी वियो आहे, वेंजी सिंजी सरस करे सिंगार पिरी, वेस गुलाबी पाए दिलि खणी वियो आहे, माणा टाणा अंगल आरा नाज़ नियारा, वेतर पाण वणाए दिलि खणी वियो आहे, घोरे नज़रुनि साण निहारी मुर्की मारी, शोखीअ सां शर्माए दिलि खणी वियो आहे, सुरंदे सुरंदे पाण अची भरमे वेही, कुख में चूंडड़ी पाए दिलि खणी वियो आहे, तुंहिंजी कयल कचहरी मूंखां नथी विसरे, गुणनि भरियो ॻाल्हाए दिलि खणी वियो आहे, सीने में जो ॾिठमि त सांवल दिलि कान्हे, अलाह अकबर, सीने में जो ॾिठमि त सांवल दिलि कोन्हे, हथ खणी कयमि हाय दिलि खणी वियो आहे।

जी हाँ समेन, प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां दोस्तन जा नाला जिन जो अवां के इंतजार होंद आहे त असां जो जिन भी दोस्तन सवाल जो सही जवाब नो आहे उन में पहिरे नंबर ते असां जो दोस्त आहे इक़बाल कुहारो अलाहाबाद मोहल्ले लाड़काणे खां जंहिं पहिरे नंबर ते सवाल जो सही जवाब नो आहे। असां दोस्त खे वधीक मुबारक बि ॾियूं पिया जो सभिनी खां पहिरियां असांखे दोस्त इक़बाल कुहारो अलाहाबाद मोहल्ले लाड़काणे खां जवाबु ॾिनो आहे। बाक़ी सभिनी दोस्तनि जवाबु ॾिनो आहे, कुझु ग़लति बि ॾिनो आहे ऐं कुझु दोस्तनि उको धुको बि हयो आहे, जंहिंमें इक़बाल लाशारी आहे मीरपुर झलोरी मीरपुर ख़ासि खां ऐं अब्दुल ख़ालिक लाशारी बि आहे ऐं यासमीन मलिक बि मीरपुर ख़ासि खां आहे ऐं फ़क़ीर महरम अली जतोई ॻोठु आगा ख़ान जतोई खां, हाजी सोहराब मंगरियो ॻोठु सचरिणो मंगरियो लॻे बकापुर खां जंहिं उको धुको हयो, आसपली चाचड़ लाड़काणे खां, अज़ीज़ सोलंगी भुट्टो सोलंगी नूरमन सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां ऐं मोहम्मद अज़ीज़ जरवार मीरपुर ख़ासि खां जंहिं उको धुको हयो त सही जवाबु मोतियो हुन लिखियो आहे जेको ग़लति आहे, ऐं मोहम्मद हुसैन खोसो कश्मीर खां ऐं बाबू अदील अबड़ो घोटकी खां ऐं पुलिस जो जवान शहबान चन्ना घोटकी खां ऐं ॻोठु सुमराणी ईंदड़ खां लॻे पनोवाकिल खां, हाफिज़ अमीनुल्लाह हैदरी ऐं हाफिज़ नईमुल्लाह काज़ी बि सही जवाबु ॾिनो दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। क़ुर्बान ख़ासि केली जंडोमरी खां, नूर हुसैन तुनियो बदीन खां, सोमेर अली लाड़काणे खां, अता हुसैन रियाज़ भट्टी ऐं ममन ख़ान कुंभार वफ़ा जमाल कुंभार एजाज़ कुंभार हालेपुरा स्टाफ मीरपुर ख़ासि खां, अब्दुल्ला चन्ना कुरेशी ॻोठु सखर खां, आमिर हुसैन जागीरणी बलोच लोहर कॉलोनी लाड़काणे खां। ऐं समिन ॻोठु मोलेरिणे माशी लॻे वॾनि वारनि खां, ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख्तियार अली सोलंगी ज़हीराबाद सोलंगी ऐं वफ़ा हुसैन सोलंगी ॻोठु कंगन खां, गुलाब ख़ान कुंभर शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर ॻोठु हसूजतोइन खां, मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई ॻोठु मोहम्मद क़ासिम चांडियो खां, अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर अहसन अकबर फहद अकबर ऐं अहद अकबर शादाब चांडियो ॻोठु छुटो मक्सी लॻे कंगन खां, सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टाप सखर लॻे सब्ज़ी मंडी खां, एजाज़ अली जूणे जो मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जूणे जो ॻोठु यार कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां, फ़ौजी इरशद अली महेसर ऐं फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो माजिद अली जतोई ऐं निसार अली जतोई। त सभिनि दोस्तनि जी वॾी महिरबानी, लख घुर्ब ऐं दोस्तनि ताईं आख़िरी कलाम पहुचायूं पिया, दोस्तनि जे नाह कयूं पिया, गॾिजी पिया एंजॉय कयूं।

जी हाँ, समय प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंची पे पाजे पुजाणी ते हयाती रही ते इंशाल्लाह वरी मां सा मुलाकात जरूर थींदी तेसि ते पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो के ॾींदा इज़त अलाह।

कश्मीर सां यकजहती लाइ यो मैत साल मल्हायो पियो वञे। अॼु खां 7 साल अॻु 5 अगस्त 2019 ते भारतीय हुकूमत हिकु तरफ़ो क़दम खणी वलारियल कश्मीर जी ख़ुसूसी आइनी हैसियत ख़तम करे छॾी हुई। कश्मीरनि सां बदीअ जे इज़हार लाइ सॼे मुल्क में रैलियूं कढियूं पियूं वञनि। सुबुह 9 वॻे 1 मिंट लाइ ख़ामोशी इख़्तियार कई वई। मुख़्तलिफ़ शहरनि में तकरीबूं थियल। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

आज जिनका बर्थडे है उनको कहेंगे माने माने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू. इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन. इसके

0: It's 11:30 AM. This sound check is brought to you by
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी अजे मुकरर कर रेट दे दस्तियाबा है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

लोग ये जो वेलकम बैक वंस अगेन, आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी। और आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488 के ऊपर, इसके साथ साथ आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं 8881 पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है GFM88 के नेम से, ठीक है। वहां पे आने के बाद आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है की, उसके नीचे आप लोग कॉमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे जो सेगमेंट है सुर लगाओ गाना सुनाओ, तो सुर लगाओ गाना सुनाओ को हम करेंगे स्टार्ट, एंड कॉल हम आप लोगों के लेंगे 03000113488 के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम एक गाना प्ले करेंगे, ठीक है जी, और इस गाने के साथ ना फिर हम सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं। एंड हियर कम्स द ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अइंबा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आरानी 03073592120
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल, अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज, अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ, अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर, नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है, आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो, डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

अब तो परदेसी जरूर जाएगा क्योंकि आपने गा दिया है चीप बॉलीवुड कंटेंट. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए. और मैं कहने वाली थी उफ उफ उफ आउच आउच, बट आप लोग समझते ही नहीं है. और आप लोग मतलब ये क्या हो गया. खैर जो भी हुआ है हम इसको चेक करेंगे. एंड जब हम इसको चेक करेंगे सो हम सही से क्या करेंगे, गानों को प्ले करेंगे. अच्छा 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स. आज हमारा सेगमेंट भी है जी बोलो तो माने. और बोलो तो माने में होगा ये कि नहीं सॉरी बोलो तो माने बाद में होगा, लेकिन आज जो हमारा सेगमेंट है डैट इज हरा भरा पाकिस्तान. और हरा भरा पाकिस्तान जो कि आप लोग सुन पाएंगे अब से ठीक ठीक 12 बजे के बाद. और

0: साथ नेक्स्ट कॉलर लेते हैं, चेक करेंगे कौन है कहाँ से। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: वाजी कुर्बान अली कासकेली बोल रहा हूं, वो था जी गुलाम कासकेली लगी झंडो मारी का।
0: ओके, मुझे बताएं कि भाई प्रोग्राम सुनते हैं, एंजॉय करते हैं?
1: बिल्कुल, प्रोग्राम बुद्धिबा जिंदगी गुलजार आई आवाज वाली के किस संगीत के आए वाला गाए बजाएं।
0: ओके, जबरदस्त, अच्छा गायन बजाएं। ये भी अच्छा है। अच्छा मुझे बताएं गाना कौन सा गाएंगे?
1: संग रामन मुगले कलाम है वो गाए संग बुदानो।
0: ओके, गाने
1: लेन जात कर बरसाऊं दई सब तन में तसारियो हूं दई मुखे न विसारियो हूं दई मां समझा तो पजरी पजरी पल पल में पुकारियो हूं दई मुखे न विसारियो हूं दई।
0: ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज। और ये वाला गाना हम जरूर सुनवाते, लेकिन आपने सुनाया है सैड सॉन्ग, और हमारे सेगमेंट का रूल है कि सैड सॉन्ग जो सुनाएगा उससे हम सुन तो लेंगे लेकिन प्ले नहीं करेंगे, ठीक है? तो हम प्ले करने जा रहे हैं सॉन्ग, और सॉन्ग जो हम प्ले करेंगे वो होगा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। सो हम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को प्ले करेंगे, और जब हम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को प्ले करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो जी, हमारे पास एक बहुत अच्छा गाना जो कि हम प्ले कर रहे हैं, इसी के साथ हम जाएंगे न्यूज़ ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वलारियल कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करण खिलाफ ए कश्मीरन सा यकजहती के इजहार लाए जो महत साल मल्हायो पो वे सिंध समेत समूरे मुल्क में मोदी सरकार के फैसले आईनी हैसियत खत्म कई हुई।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड़ बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: पाकिस्तान की शान खुशखबरी। क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9596-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
2: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे
1: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधाए
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी FM 94

Okay, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आर जे रुसार. आए आकर मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जो कि रहने वाला है. And this is the beautiful song by Atif Aslam from the album Subah Aaye Na. And the song called Hoon Ishq Mein for the very first time.

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और हम लेने जा रहे हैं आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स. चेक करेंगे कि कौन है कहां से. और लास्ट लाइन में हम लास्ट लकी कॉलर्स को इंटरटेन करते हैं. सो हियर कम्स द कॉलर. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? ओके जी, शिकारपुर से जफर. आपकी कॉल कट गई है. 03000113488. नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहां से?
1: जी मैं वकार जतरी से लालकाना से रुखसार.
0: ओके वकार भाई, मुझे बताइए आज की अच्छी बात.
1: आज की अच्छी बात ये कि हमारे लालकाना में मौसम भी अच्छा है और आपका शो भी बहुत अच्छा है. प्यारा लाड प्यार से आपका शो सुनते
0: शो सुनते हैं. ओके ये अच्छी बात है. लालकाना का मौसम अच्छा है?
1: बिल्कुल अच्छा है. ऐसी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बिल्कुल है कि मेरा दिन में भी रात जैसा है.
0: अरे वाह क्या बात है जी, क्या बात है. बस फिर मौसम एंजॉय करें आप. और मुझे ये बताएं कि और कुछ कहेंगे
1: जी? और ये कहेंगे गाना सुनाओगे? नहीं,
0: गाना सुनाना है. वैसे गाना सुनाने वाला सेगमेंट तो खत्म हो गया है.
1: नहीं नहीं, वैसे आप सुनाएं तो सुनाए, लेकिन नहीं है तो नहीं है.
0: सुनाए तो सुनाए, नहीं है तो नहीं है. चले बता दे कौन सा गाना है.
1: गाना ये, मान ली जा तू मेरा दिल न जला परदेसी, आज की रात न जा परदेसी. अफराजी का है.
0: चले मैं इसको सर्च करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ. ठीक है
1: ठीक है. तो मौला आपको खुश रखे. गाना प्ले कीजिएगा थोड़ा ही सही.
0: अच्छा ये किस सिंगर का गाना है?
1: ये अल्ताफ राजे का है, मान भी जा तू मेरा दिल न जला. पाकिस्तान
0: तू मेरा दिल न जला. अल्ताफ
1: मान भी जा तू मेरा दिल न जला.
0: मान भी जा तू मेरा दिल न जला है ना? चले मैं देखती हूँ जी ये कैसा गाना निकल के आता है. ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिये. अल्लाह हाफिज. और इसी के साथ वकार भाई का गाना तो हम सर्च करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्ले करेंगे एक और.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन।
1: वलारेल कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने खिलाफ है कश्मीर इंसान यकजहती के इजहार लाए जो में साल मल्हायो पियो वे सिंध समेत समूरे मुल्क में मोदी सरकार के फैसले हैं कश्मीर इंसान एक्वीह के इजहार लाए रैलियों खास तकरीबन जो भी एहतमाम किया वो एक मिनट की खामोशी भी इख्तियार कई वही अज का सत साल अग 5 अगस्त 2019 से भारतीय हुकूमत एक तरफो कदम खणंदे वलारियल कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत खत्म कई हुई। सदर आसिफ जरदारी ए वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कश्मीरी आवाम से बदी जो इजहार योम इस्तेसाल कश्मीर के मौके से सदर आसिफ जरदारी है दखण एशिया में जटादार अमन जो क्याम कश्मीर मसले के हल से जुड़ियल है भारत जहा एक तरफा कदम आलमी कानून की भनकड़ी अड़ा कदम कश्मीर की कानूनी हैसियत खत्म नथा करे सघन पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के इखलाकी सियासी ए सफारती हिमायत जारी रखो वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो 5 अगस्त 2019 से भारत कश्मीर के आइनी ए कानूनी हैसियत तब्दील करण की कोशिश कई भारतीय कदम आलमी कानूनी ए सलामती काउंसिल के ठहराव की भनकड़ी है दखण एशिया में अमन इस्तकाम लाए कश्मीरी मसले जो हल जरूरी है पाकिस्तानी हुकूमत ए कौम कश्मीरी अवाम से गड बीठल है। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पाक सजाया बहरिया के सरबराहन के योम इस्तेसाल से वलारियल कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार वलारियल कश्मीर में भारतीय फौज के घेराव इंसानी हकन के भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के कब्जे से गिनती का इजहार वलारियल कश्मीर में भारतीय फौज हथा शहीद थींदड़न के भेटा पेश आईएसपीआर मौजूद कश्मीर मसले जो हल कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशन ए सलामती काउंसिल के ठहराव मौजूद होने घुर्जे भारतीय चिड़ डियारींदड़ बयान ए जहराणो अमल खिते में अदम

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स

0: खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटो से पैंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03005569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा। छो परेशान आई
2: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी।
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

साथ निभाने के लिए इसी के साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि प्रोग्राम में सिर्फ आप लोगों के लिए व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बातें नहीं होंगी बल्कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी गाने भी सुनाएंगे आप लोगों के साथ मस्तियां भी करेंगे आप लोगों के फीडबैक्स भी शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे तो कुल मिलाकर प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाले मजे करेंगे और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा बातें करेंगे लेकिन अपना भी जरा तारीफ करवा लेते हैं सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजी एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान नाम तो सुना ही होगा तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आपके साथ मुखातिब है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए तो चलिए जी जल्दी जल्दी से ब्यूटीफुल बनते जाइए और यहाँ पर जरा बताते जाइए कि कौन कौन हमारे साथ मौजूद है और कहाँ कहाँ से अपनी खूबसूरती की दुनिया में जो है ना वो जरा हाजिर होने के लिए आ चुका है और इसके अलावा जरा आप अपने हाल चाल भी बताते जाइए सो डियर लिसनर्स अंत की हालत कैसे है आपकी हालत है उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सुपरकूल मूड के साथ सुपरकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों दिलों में घंटियां बजा दें तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होंगे इन 2 घंटों में हम इन्हीं शाली बातें करने वाले हैं और इसी के साथ साथ यहां पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठ पर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करेगी भाईजान ये सिद्रा तो बिल्कुल आपके होंठ पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही खूबसूरत से कसीदे के साथ तो बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुन लेते हैं उसके बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होने वाले हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए

0: ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कसीदा जो कि आप यहाँ पर सुन रहे थे और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. White Asian Tea Skin Beauty Show स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है White Asian Beauty Products and Tea Skin Beauty Products के तावन से. यहाँ पर आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे जनाब, अपने होने का एहसास दिलाएंगे, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए. इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शामली प्रोग्राम कैसे होंगे वो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है. तो आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि भाई हमने कुछ दिन हो चुके हैं कि हमने कॉल ही नहीं ली है, समझ रहे हैं. तो कॉल ही नहीं ली है तो हम ये चीज जो है ना वो प्रोग्राम के अंदर ऐड करेंगे कि आप लोगों के लिए ना हफ्ते में एक या दो दिन हम पूरा प्रोग्राम जो है वो कॉलर्स के नाम डेडिकेट किया जाएगा, यानी कि उसमें पूरी जो है ना वो प्रोग्राम के अंदर कॉलें ली जाएंगी और जो लोग बेचारे मैसेज नहीं कर सकते, कॉमेंट नहीं कर सकते, तो वो हमें इजिली कॉल कर सकते हैं. और कॉलर्स के साथ तो वैसे भी गपशप बड़ी अच्छी हो जाती है कभी कभार हर वक्त नहीं, कभी कभार. तो बिल्कुल अगर आप भी इस चीज से एग्री करते हैं कि हाँ जी हफ्ते में एक दो मरतबा कॉलिंग तो होनी चाहिए और एक पूरा प्रोग्राम जो कि कॉलर्स को डेडिकेट किया जाएगा, यानी इसमें आप लोगों की सिर्फ कॉलिंग पिक की जाएंगी. हाँ मैसेजेस कुछ पढ़े जाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लूंगी, लेकिन ज्यादा जो हमारा ध्यान होगा वो कॉलर्स की जानिब होगा. तो आज के प्रोग्राम में आप लोगों की कॉल्स पिक की जाएंगी और आज के प्रोग्राम में जो मैं कॉलें लूंगी तो कॉलर्स के लिए एक सेगमेंट होने वाला है और सेगमेंट होगा गैस द प्रोडक्ट, यानी कि हम इतने दिन हो चुके हैं लिसनर से ये नहीं जानेंगे भाई. मैं सर आप लोगों को कोई चीज बताऊंगी, जैसे कि आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में तो मैं पहले से बहुत कुछ बता चुकी हूँ, बहुत सारी चीजें जो कि आप लोग जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में. तो आज ऐसा होगा कि मैं आप लोगों को कोई ना कोई ऐसी चीज पूछ लूंगी और आपने गेस करना है कि मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, समझ रहे हैं. तो अगर आप कॉल पर आएंगे मैं आप लोगों से कोई भी ऐसी चीज पूछूंगी जो कि हाँ रिलेटेड होगी प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है. तो आपने गेस करना है कि मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ. तो इस तरह का कोई प्रोडक्ट होगा जो कि आप लोगों ने गैस करना होगा. तो जो लोग सही गैस करेंगे जाहिर सी बात है उनको विनर करार दिया जाएगा. और उसके अलावा ये आज के प्रोग्राम का सेगमेंट होगा गैस द प्रोडक्ट. और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब. आप सर्च करेंगे आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा. जल्दी से पेज के ऊपर आइए और वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. जल्दी से बताइए आप कौन हमारे साथ मौजूद है, कहां से सुन रहे हैं. ओके जी, तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और जल्दी जल्दी से पोस्ट को भी लाइक और शेयर करते जाइए क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती हैं. और जनाब उसके अलावा White Asian ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट वो भी आप मुझे बताएंगे. ऐसे के साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं. अच्छा लाली हमारे साथ मौजूद यहाँ पर कहती है अस्सलाम वालेकुम, आज जाने की आयो, उम्मीद है ठीक हो ना जी, मासेफा ठीक था मुदाय की आयो. अखलाक बलोच हमारे साथ मौजूद है, हेलो अखलाक भाई. सादिया अली हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं. उनके अलावा अली मोहम्मद हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहते क्यू सिस्टर आप कैसी हैं, मैं ठीक हूँ प्यारे भाई जान. और आशिक अली जलबानी हमारे साथ ही, हाय स्वीट आर्शी, हेलो टू यू. सादिया कहती गाना सुनाइए, मैं कोशिश करती हूँ गाना लगाएंगे. और कहती यहाँ पे ये स्टडी आपको बड़ा मिस किया था, अल्लाह जाए बुदा. चाचा खालिद कहती है Assalamualaikum beta, how are you? Oh fine, yes, I'm good. How have you been? अच्छा लाली कहती मिठो आवाज, प्यारो अंदाज, मथा मेरी नखरा आईनाज, वल्ला माशाल्लाह, थैंक यू सो मच. सुमरो साहब कहती हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, तो खुशियां जी मां खुश ता बुधायो. और किशोर भाई कहते हैं सलाम अदास, स्मार्ट हाजरा, छा खाइंदो पीअंदो गरम थदो, अज अमा थकजी आया हुंदा छुट्टी करे, थकजी त कीअं छुट्टी ते माण्हू रेस्ट करे ईंदो आहे कि न थकजी ईंदो आहे. ये चो था जो मां सफा रेस्ट वाले मूड में आया. और ऐसे नारबानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम एंड मौलाना इस्लाम मदद कहते हैं. ओ माय फेवरेट आरजी मुस्कान, मैडम मुस्कान कैसी हैं आप और आपकी तबीयत कैसी है, सब कुछ ठीक ठाक पांजी जगह ते ताम बुधाए की आयो, ठीक ठाक आयो मजे में, आई केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया. उनके अलावा किशोर भाई कहते हैं कि जिंदा आई हूँ बाबा जिंदा, तू रोज रोज असां के मारण के चक्कर में छो हों न चक्कर में ना हूं तो बस मुख्य खबर हो जन घुर्ज तो केर केर जिंदा आया तक धरती ते बोझ. अच्छा मोहम्मद जमान कहते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू यू सुंदर बुआ जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे भाई जान. और किशोर भाई कहते हैं नन्ना सालों की कुछ गड़बड़ है, आप पहले बताया करें. नहीं मैंने पहले ही बताया ना, इसीलिए तो आते साथ ही बता दिया कि आज प्रोग्राम में क्या होने वाला है. और चाचा कहते हैं मैं कैसे कॉल सेगमेंट अटेंड करूं, मेरी तो कॉल पर बंदिश है, नहीं बंदिश आपकी कोई भी नहीं है, बस आप कोशिश करें, मैं आज पूरा जो है ना प्रोग्राम कॉल ही लूंगी तो क्या पता आपकी कॉल भी मिल जाए। मूसा कोरी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और ये हमारे साथ अखलाक भाई कहते हैं कि हम लिखे पढ़े लोग हैं, हम नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, तो आप प्रोग्राम सुनिए। अच्छा हैप्पी गर्ल हमारे साथ है, रियल हैप्पी गर्ल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सुनो जाने क्या हाल है आपके, मैं भी आ गई आपकी प्यारी सी महफिल में, वेलकम कहते हैं हैप्पी गर्ल आपको। और ना का अलावा मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम बाजी। वाइटिश ब्यूटी क्रीम नाइस और सॉन्ग सुनाई शमन का केड़ा गजब बजा सिंगार गया थे, चलें चलें बिल्कुल भाई के लिए गाना लगा देंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ हैं। और ऐसे ही आप प्रोग्राम सुनते रहिए, प्रोग्राम की पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और उसके अलावा हम अभी यहाँ पर जा रहे हैं जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, यही हमारे पास जो ना मौजूद रहना है, सुनते रहेंगे और साथ निभाएंगे पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।
1: FM 88। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवहा जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग, इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवहा के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट, हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी, बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर कॉलें जो है ना वो मैं लूंगी, अभी स्टार्ट करेंगे. लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये भी बताते चलो कि यहाँ पर वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों से सवाल पूछूंगी. तो इससे भी ये चीज मालूम होती है कि अगर आप ओके जी, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सिटीज के अंदर अभी तक वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो अगर आप भी अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएं, ताकि ऐसा ना मुझे सुनने को मिले कि भाई जी असांजी तो करीबी जनरल स्टोर से कौन मिले, तो बाजी असां वेंदासीं शहर त वठी ईंदासीं, अबा ईअं न कयो तव्हां हाणे थोरो मुल्क जेको आहे न तरक़ी कंदो वञे थो ऐं दुनिया लाइ किथे वञी पहुती आहे, तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सघो था. उन जे लाइ तव्हां वटि नंबर आहे, नंबर अगरि ॿुधाया वञे त नंबर आहे, नोट कयो सभ खां पहिरीं, बिल्कुल जी, नंबर आहे 03-12-50-25-907 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09. हाणे ही नंबर तव्हांखे डायल करणा आहिनि, नंबर ते डायल करण खां फौरन बाद तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते ही तमामु प्रोडक्ट्स, यानी कि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वेंदा. सो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स बि लॻाईंदा ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बि लॻाईंदा, जेका तव्हांजी दिलि करे सो लॻायो बाबा. ही सफ़ा चवंदा न शक्तिशाली प्रोडक्ट्स अथव, ॾाढा पावरफुल आहिनि, अगरि तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांजी ख़ूबसूरती सफ़ा नेक्स्ट लेवल ते पहुची वेंदी. उन खां अलावा तव्हां जो जेके कॉल्स वठण मां हाणे स्टार्ट कयां थी, छो त अॼु जो जेको सॼो प्रोग्राम हूंदो कॉलर्स खे डेडिकेट हूंदो. बाबा कॉलर्स बि चवंदा अथव भाजी असां कहिड़ो तव्हांजो ॾोह कयो आहे, असांखे शामिल न आहियो कंदा प्रोग्राम में. सो बिल्कुलु अॼु कॉलूं तव्हांजूं वठूं था, पर तव्हां जेके फेसबुक ते माण्हू असांखे ॿुधो पिया, पोस्ट खे ज्यादा खां ज्यादा तव्हांखे लाइक ऐं शेयर करिणो आहे, ठीकु आहे. सो पैनल ते बि तव्हांजा मैसेजेस आहिनि ऐं कॉमेंट्स बि तव्हां कंदा वञो बाबा, पढ़ी वठंदासीं. हिकिड़ो मिंट मां मोबाइल खणी अचां, ईअं छो तव्हांखे छॾी वञा, ॿियो त भला तव्हांखे हिकिड़ो गानो ॿुधायां थी. ही सास तव्हां गानो बि ॿुधो ऐं प्रोग्राम आहे वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमालु कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो.

ई वात पटे छो तव्हां प्रोग्राम ॿुधंदा तव्हां बि कॉल कयो न प्रोग्राम में असां ख़बर पई त बाबा तव्हां खे केतिरी नॉलेज आहे वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में सो ओके जी असांजो कॉलिंग नंबर आहे 0332123228

0: चलो जी, सो हाणे कॉलिंग सेगमेंट स्टार्ट कयो वियो आहे. हाणे तव्हां कॉल करे सघो था. कॉलिंग नंबर आहे 03321322 and 88. अच्छा, माना इहा ॻाल्हि आहे. ओके, सो फर्स्ट कॉल हिते अचे पई. सो फर्स्ट कॉल ॾिसूं था त फर्स्ट कॉलर कहिड़े सां गॾु मौजूदु आहे. हैलो जी, अस्सलाम वालेकुम. ओके, तव्हांजो छा हाल आहे भाउ? ख़ुशि आहियो? हा, कॾहिं कॾहिं न, हाणे मतिलबु हफ़्ते में हिकु ॿ दफ़ा खणंदासीं. हा, अच्छा, मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हांजे लाइ जेको सेगमेंट आहे उहो ॿुधो आहे अॼु प्रोग्राम जो? सेगमेंट इहो आहे त अॼु मां तव्हां खां असांजा प्रोडक्ट, त तव्हां ख़बर आहे न, वाइटिश ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. अच्छा, सो मां हिननि प्रोडक्ट जे बारे में का ॻाल्हि तव्हां खां पुछंदमि ऐं तव्हांखे हुनजो सही मूंखे जवाबु ॾियणो आहे. अच्छा, सो तव्हां खां जेको पहिरियों मां सवाल पुछंदमि इहो हूंदो त तव्हां मूंखे ॿुधायो ॿिनि ॾींहनि में रिज़ल्ट जेका कहिड़ो प्रोडक्ट ॾींदो आहे? वाइटिश ॿिनि ॾींहनि में रिज़ल्ट ॾींदी
1: आहे.
0: ओके ओके, मूंखे ॿुधायो कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? ओके, थैंक यू सो मच प्यारा भाउ, तव्हांजो मोहबत वारो प्रोग्राम ॿुधो पिया. भई मां चयो पहिरियों कॉलर आहे त हुन खां सोलो सोलो सवाल पुछां थी, पर ॾिठव ॾिठव ॾिठव. ओके जी, कॉलिंग नंबर 03321322 and 88. हाँ जी, दुक्का तो लगाया लेकिन वो गलत दुक्का था. नेक्स्ट कॉलर की जान बातें देखती कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. केर मौजूदा? ओके ओके, मां ठीकु आहियां. तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अलहमदिल्ला, ठीकु ठाक, मज़े में. मूंखे ॿुधायो प्रोग्राम ॿुधो पिया. सही वाह, सही वाह, वाह वाह वाह वाह. मोरो में मतलब मिले थी? तरक़ी थी वई ईअं न? अच्छा अच्छा, मां तव्हां खां सवाल पुछंदमि, हुन तव्हांखे जवाबु ॾियणो आहे. सवाल इहो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो त कहिड़ो प्रोडक्ट आहे जेको ॿिनि रातिनि में रिज़ल्ट ॾींदो
1: आहे?
0: ॿिनि रातिनि में रिज़ल्ट ॾे थो. रुगो ॿ रातियूं लॻाईंदा तव्हां सुहिणा थी वेंदा. वाइटिश लवली क्रीम, उहा त राति जो लॻाइण वारी क्रीम ई कोन्हे का, हुनखे त तव्हां ॾींहं जो बि लॻाए सघो था. अच्छा अच्छा, चलो कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? जी जी, कहिड़ो? कहिड़े सिंगर जो गानो आहे इहो? चलो ठीक है, मां कोशिश कयां थी गानो हलाईंदासीं. थैंक यू सो मच, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई. वाइटिश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कंदा आहियो पर तव्हां बि सवाल जो सही जवाब न ॾिनो. जेसि ताईं मूंखे हिन सवाल जो सही जवाब न मिलंदो, मां तेसि ताईं ॿियो सवाल तव्हां खां कोन पुछंदसि. जी जी, बिल्कुलु, तव्हां कॉल करे सघो था. तव्हां गानो बि ॿुधायो, तव्हांजी जेका दिलि चवे उहा तव्हां ॿुधायो, ऐं हुन खां अलावा मां सवाल तव्हां खां लाज़मी पुछंदसि. सो कॉलिंग नंबर आहे 03321322 and 88. नेक्स्ट कॉलर, ॾिसूं कहिड़े सां गॾु मौजूदु आहे. हैलो, हैलो. ओके, कॉल तो मिल गई थी, बात क्यों नहीं की? कोई शर्मीला इंसान होगा. बिल्कुल, सुना आप प्रोग्राम सुन रहे हैं. वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. नेक्स्ट कॉलर की जाने बातें देखे कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो जी.
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो हेलो, कहिड़े से सगन मौजूद आ?
2: राहिला बतूल.
0: राहिला बतूल, किथां कॉल कई आ? कंबर खां राहिला बतूल फोन कई आ. छा हाल राहिला, खुश आयो? कंबरा,
2: हां.
0: अच्छा अच्छा, चलो ठीक आ, ठीक ठाक आयो. प्रोग्राम बुधो पिया? मां भी ठीक आहियां. कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु करे पई राइला सुणी?
2: न कयो आहे असांजे शहर में.
0: न आहे अली? छो न आहिनि तव्हांजे शहर में? तव्हां जेको नंबर ॿुधाईंदा प्रोग्राम हुन ते डायल करे पंहिंजे बि शहर में अवेलेबल करायो न, जे तव्हां बि इस्तेमालु करे सघो. चलो ठीकु आहे, तव्हां पंहिंजे भाउ खे चओ त उहो ॻाल्हाए. भाउ अथव नी? चलो मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदो? ओके, थैंक यू सो मच राहिला, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई. इलाही सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए. प्रोग्राम में कॉल कंदा कयो बाबा, तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे. ओके जी, सो नेक्स्ट कॉल जी तरफ अचूं ऐं ॾिसूं नेक्स्ट कॉलर कहिड़े से सगड मौजूदु आहे. हैलो जी, अस्सलाम वालेकुम.
1: وعلیکم السلام. ابھی خوش جا کے چنگی بھلی بھی
0: صفا صفا مزے میں. تاں بتایا کی آیو کیڑے سے سگڈ موجود آیو؟
1: ابھی آو حافظ ہنی ورند پہ ورد کیا پجو گڑی کھیرے موہ دو پن جی اندر تم ایک ما باجے پھسے گو.
0: واہ سائیں واہ, واہ سائیں واہ. پروگرام بدو پیا؟
1: پروگرام تو روزانہ بدندا ہوں. جڑے گوڈی ابھی جو پروگرام چالو جو تم بدو دماغ باقی فون تے تو جو اج بدو تم.
0: اللہ فون تے اج بدو. مکھے یہ بدھایو تا تما اج جو سیگمنٹ بدو ائے تما کا سوال پچھا. ہاں
1: سوال پچھو بکاج واگی الا کھیر کرو تا کے سوال جو مت دی ونو.
0: سوال یوں مت ا کا پچھنم تو مکھے بدھایو تا کیڑو پروڈکٹ ا جے کو تا کے بدھائندا جے کو بن راتن میں رزلٹ دیندو ا.
1: ہاں یہ اج میں تے ہو تو پر ہانے وری الا کرو اے چوتی کرے والا چا ایا.
0: हाँ, मन अग में बियो हुंदो हाणे वरी बियो आ.
1: हाणे वरी बियो आ, अग में बियो सी लाइ हुंदो तो नालो हाणे वरी बियो आ.
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मुखे बुधायो त केडन दोस्तन के याद कंदो?
1: हां याद त काफी दोस्तन के कंदा से जिते जिते आवाज वने तो सबनी के खोड़ सारा सलाम नाला खंदा ते प्रोग्राम ही पूरो थी एतरी संगत आ.
0: वाह वाह, चलो यो भलो कहे ता सबनी के सलाम दई छड्या. बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. हाँ जी, सवाल जवाब आके भलो दिन अदे अन्या असांगे सवाल जो सही जवाब कौन मिलियो आहे सो असां बी कॉल वठूं था ॾिसूं त केरस सगड मौजूद आहे. हेलो
2: हेलो,
0: केरस सगड आ
2: राबिया बत
0: नादिया
2: राबिया राबिया
0: राबिया राबिया किथां कॉल कया?
2: रोहिणी खां.
0: रोहिणी खां राबिया, छा हाल तव्हांजो? ख़ुशि आहियो
2: जी भाजी? तव्हां ठीकु आहियो?
0: अलहमदुल्ला सफ़ा ठीकु. प्रोग्राम ॿुधो पिया राबिया?
2: जी जी भाजी.
0: अच्छा, कहिड़ो प्रोग्राम ॿुधो पिया? नालो अचे थो
2: डी
0: आइसक्रीम. वाह वाह वाह वाह, मुखे यो बुधायो सवाल पुछा म तां खां राबिया.
2: जी बाजी,
0: सवाल पुछा तां खां
2: पुछ पुछ.
0: मुखे यो बुधायो त केड़े ओ प्रोडक्ट आ जेको बिन रातन में रिजल्ट दे थो?
2: डी आइसक्रीम. बीटी क्रीम.
0: केड़ी?
2: डी आइसक्रीम.
0: ओके, जबरदस्त. तां जो सवाल जवाब सफा सही आ. तां बुधो हो या तां के केई बुधायो आ?
2: ना
0: ना, चलो मुखे बुधायो त तव्हां ॿियो छा चवंदा?
2: बस बाजी तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधूं
0: था. ओके, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदो?
2: माशाल्लाह सुठो आहे प्रोग्राम. भाइयो सुभाना. हा, राइला राबेल.
0: ओके, राबिया असांखे सही जवाब ॾिनो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे उहा ॿिनि रातिनि में रिज़ल्ट ॾियण वारो प्रोडक्ट आहे. ऐं इहो तव्हांखे मां खोड़ टाइम दफ़ा ॿुधाए चुकी आहियां, सो इहो तव्हां यादि रखिजो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॿिनि रातिनि में तव्हांखे रिज़ल्ट ॾिए थी. हाणे असां ॿिए सवाल तरफ़ बि मूव कंदासीं ऐं ॿी कॉल जी तरफ़ बि मूव कंदासीं. सो कॉलिंग नंबर आहे 0333221322 एंड 88. ॾिसूं था केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे. हैलो जी, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम.
0: केरु मौजूदु आहे?
3: मिरपुर खां हरगमन भाई जरार ॿुधायां थी.
0: नालो ॿुधाइजो वराए पंहिंजो.
3: मोहम्मद अली जरार.
0: ओके, मोहम्मद अली जरार भाउ, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? ओके ठीक आयो प्रोग्राम बुधो पिया वाह साईं वाह मिरपुर खास में मिलन था ही प्रोडक्ट जेके बुधाईंदी आ मां रोज प्रोग्राम में
3: ना साईं कोन था मिलन
0: अना कोन था मिलन
3: ना सर जात के या कोन था मिलन साईं
0: अच्छा चलो असा अवेलेबल कराए बैठू था मिरपुर खास में मुखे भी उदाए तो तवा का सवाल पूछा
3: जी
0: सवाल यो आ तो मुखे बुधायो त एलोवेरा जेको आ वो केड़े प्रोडक्ट जे अंदर ऐड थियला चलो मुखे बुधाए केड़न दोसन के याद कंदा
3: दोस्तन याद कने सही फौजा समरो बुजुर्ग
0: हाजिर हाजिर खाली
3: क्लाशारी है गुलाम रसूल मरिया अजी सोनगी है कुर्बान खास के लिए
0: ओके थैंक यू सो मच प्यारा बा हाँ जी अगर समझ में गाल ना आ जाए तो बस चाही सरिंदा कहे ओके ठीक है भी गाल कर सो मां तो कोशिश कई तो मां सोलो सवाल पूछां अदो पहिरियां ई लॻे पियो त ही सवाल जवाब न ॾियण जे मूड में हुयो चलो ठीकु आहे खैर आस तव्हां खां पुछंदासीं ॿियो सवाल मतिलबु इहो ई सवाल ॿिए कॉलर खां ॾिसूं था त केरु असां सां नेक्स्ट कॉलर मौजूदु आहे प्रोग्राम में हलो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सोलंगी अच्छा किथां कॉल कई आहे सखर से बात कर रहे हैं मुझे बताए मेरा प्रोग्राम सुनते हैं सखर में तो चलता है अच्छा मुझे बताए आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो मैं बताती हूँ वाह वाह वाह मैं सवाल पूछूं आपसे जवाब देंगे मुझे मैंने सवाल ये पूछा है कि आप मुझे बताएं कि एलोवेरा जो है वो कौन से प्रोडक्ट के अंदर ऐड की गई है एलोवेरा जिसे सिंधी में चेबो कुंवार बूटी वाइट टेस्ट ब्यूटी क्रीम में वाह सही वाह भाज लाए ताड़ियों थी वजन केड़न दोस्तन की याद कंदा हेलो भा अदे जी कॉल ड्रॉप थी वही दोस्त वेचारा हे दुख कंदा असा के याद न कयो चलो दोस्तन के खैर तमा याद करी वठजो पर हिते टाइम जेको थियो आहे त उहो थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ हलण जो अच्छा हीउ जेको सवाल हो मूंखे लॻे पियो त इनखे बि तव्हां वॾी ड्रेग कराईंदा छिकींदा पर इनखे तव्हां खेर छिकियो कोन ऐं ॿिए कॉलर ई अचे हिन जो सही जवाबु ॿुधाए छॾियो एलोवेरा जेका आहे उहा वाइटिश ब्यूटी क्रीम जे अंदरि एड थियल आहे सम्झूं था उन खां अलावा हाणे वरी टियों सवाल पुछंदासीं जेको ॿियो कॉलर असांजे प्रोग्राम में ईंदो हाणे टाइम थियो आहे बाबा न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ हलूं था सो न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ खां हली पोइ तव्हां ॾांहुं वापसि मोटींदासीं अलाए छा ॻाल्हायो सम्झ में न आयो न्यूज़ ब्रेक हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा पोइ वापसी जल्दी तव्हां ॾे मोटींदासीं तव्हां करे न वञो हिते वेठा हुजो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए

0: It's 2 PM.
1: This time check is brought to you by
2: Fakiri Analgesic Cream. Dard, Sojan, Varam, Fauri Khatam. Karibi Store se naam lekar talab karein.
3: Skin Beauty Cream हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो
4: जे मौके ते सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त ॾखण एशिया में जटादार अमुल जो क़याम कश्मीर मसले जे हल सां जुड़ियल आहे भारत जा हिक तरफ़ा कदम आलमी कानून जी भंगड़ी आहिनि अहिड़ा कदम कश्मीर जी कानूनी हैसियत ख़त्म नथा करे सघनि पाकिस्तान कश्मीरी इलाक़ी सियासी सफ़ारती हिमायत जारी रखंदो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त 5 अगस्त 2019 ते भारत कश्मीर जी आइनी ऐं कानूनी हैसियत तब्दील करण जी कोशिश कई भारतीय कदम आलमी कानून ऐं सलामती काउंसिल जे ठहराउ जी भंगड़ी आहिनि ॾखण एशिया में अमुन इस्तेकाम लाइ कश्मीर मसले जो हल ज़रूरी आहे पाकिस्तानी हुकूमत ऐं क़ौम कश्मीरी अवाम सां गॾु बीठल आहे फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पाक फिज़ाया ऐं डेहरिया जे सरबराहनि जो इहो इतसाल ते वलारियल कश्मीर जे अवाम सां यकजहतीअ जो इज़हार वलारियल कश्मीर में भारतीय फ़ौज जे घेराउ इंसानी हक़नि जे संगीन भंगड़ियुनि ऐं भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज जे कब्ज़े ते ॻणितीअ जो इज़हार वलारियल कश्मीर में भारतीय फ़ौज हथां शहीद थींदड़नि खे भेटा पेश आई एस पी आर मूजिबि कश्मीर मसले जो हल कश्मीरी अवाम जे ख़्वाहिशनि ऐं सलामती काउंसिल जे ठहराउ मूजिबि हुअणु घुर्जे भारतीय चिड़ ॾियारींदड़ बयान जहराइणो अमल ख़िते में अदम एहतसाम जो सबबु बणिजी रहियो आहे अवाम ऐं पाक फ़ौज कश्मीर जी आज़ादीअ जो जाइज़ ऐं हक़ीक़ी जिदोजहद में गॾु बीठल आहे वलारियल कश्मीर जो अवाम पंहिंजनि हक़नि लाइ मज़बूती सां बीठल आहे भारतीय कदम आलमी कानून सलामती काउंसिल ऐं कश्मीरी अवाम जे उमीदनि ते हमिलो आहे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त ॾखण एशिया में अमुन इस्तेकाम कश्मीर मसले जे हल सां ॻंढियल आहे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध जो अवाम कश्मीरियुनि सां गॾु आहे भारत कदम वलारियल कश्मीर जी हैसियत तब्दील नथा करे सघनि सीनियर वज़ीर

अंगण ऐं नौशेरो फिरोज़िले जे ॿिन्हिनि नंढनि वॾनि शहरनि में कश्मीरनि सां एकीअ जो इज़हार कयो वियो। सखर, खैरपुर ऐं घोटकी ज़िले में बि रैलियूं कढियूं वयूं। लाड़काणो, कंबर, शादातकोट, कश्मोर, रेडकंद कोट, जेकमाबाद ऐं शिकारपुर में बि रैलियूं कढियूं वयूं। जल्द आबना हरमुस खुली वेंदो। ॿी सूरत में ईरान खे ख़तरनाक हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टीवी इंटरव्यू में चयो आहे त ईरान ते ॿी आलमी जंग खां बि वॾो हमिलो करण वारा हुआसीं, जंहिंजो ॿुधी ईरान फोन ते राब्तो करे मुआहिदे लाइ चयो। आबना हरमुस जल्द न खुले त ईरान ते वॾो हमिलो कंदासीं। आबना हरमुस बाबति शुरूआती मुआहिदो अॼु थियण जा इम्कान। हरमुस जे उतर वारे रस्ते ते ईरान ऐं ॾखण वारे रस्ते ते ओमान जो कंट्रोल हूंदो। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट जी दावा न्यूज़ वेबसाइट मूजिबि मुआहिदे सां आबना हरमुस ते कंट्रोल बाबति ईरान जा घणा मुतालबा मञिया विया आहिनि। शुरूआती तौर 60 ॾींहं दौरान आबना हरमुस मां गुज़रंदड़ कंहिं बि पहिरीं ॿेड़े खां टूल या फीस न उगाड़ी वेंदी। ईरान मंज़ूरीअ जो अमल मुकमिल करे वरितो आहे। अमेरिकी इख़्तियारियूं अॼु मुआहिदे जो ऐलान करे सघनि थियूं। ईरान जंग सबब अमेरिकी हथियारनि जे ज़खीरे में वॾी घटिताई। दिफ़ाई मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम थार जा 80% इंटर ख़तम थी विया आहिनि। अमेरिकी ख़बरू इदारे CNN जी रिपोर्ट मूजिबि अमेरिकी अधु ज़खीरो इस्तेमालु थी चुको आहे। हथियारनि जे घटिजी वियल ज़खीरे ईरानी हमलनि जे ख़दशे सबब सदर ट्रंप ईरान ते वॾो हमिलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। बरतानवी मीडिया मूजिबि बेदुरुस्त निशानो लॻाईंदड़ अमेरिकी मिज़ाइल ख़तम थी विया आहिनि। यमीन हुसैन पारां रेड सी में सऊदी बहरी ॿेड़े खे निशानो बणाइण जी दावा। हुसैन जे फ़ौजी तर्जुमान चयो आहे त रेड सी में सऊदी अरब जे तेल बरदार ॿेड़े खे मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। सऊदी जे बहरी नाकाबंदी बाद 8 बहरी ॿेड़नि खे समुंड में निशानो बणायो आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार यरूशलम बाबति कॉन्फ्रेंस में शिरकत लाइ उर्दन पहुची वियो। इजलास में अरब लीग समेत मुस्लिम मुल्कनि जा परॾेही वज़ीर शिरकत कंदा।

0: सिंध काबीना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट जे नई सिर जड़ जोड़जक करण जी मंजूरी ॾेई छॾी। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सूबाई काबीना जो इजलास सूबाई वज़ीरनि सलाहकारनि ऐं लागापियल अमलदारनि जी शिरकत। पीपल्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विसिस लाइ 2026-2027 जी बजट मंजूर 20 करोड़ रुपियनि जी शुरूआती।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: मौजूद आहिन। फौजी बहरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: ਅਸੀਂ ਕਾਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਏ 0332132238 ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੈਲੋ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ
0: ਕੇਰ ਮੌਜੂਦ ਆ
1: ਸਖਰ
0: ਖਾਂ ਕਿਰਨ ਲਗਾਰੀ ਛਾਲਾ ਕਿਰਨ ਖੁਸ਼ ਆਯੋ
1: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਤਾਇਓ
0: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਜ਼ੇ ਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਧੋ ਪਿਆ ਕਿਰਨ ਅੱਛਾ ਮੂੰਖੇ ਬੁਧਾਇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਯੋ ਆ ਜੇਕੋ ਬੁਧਾਈਂਦੀ ਆਯਾਂ अरे बा किरण जी कॉल ड्रॉप थी वही मां चाहिए पे किरण सा थोड़ो गाल आया ओ हेडी सारी गालियों कयो बे तो तू सा गालियों कयो आईली ओके जनाब सो कॉलिंग नंबर 0332132238 सवाल जेको हानी तवा कॉल कंदा तो सवाल तवा का पुछंदम तो ट्री हा विटामिंस जा जेके कैप्सूल्स आइन वे केड़े प्रोडक्ट जे अंदर ऐड थियल आ है यो सवाल तवा के न जो जवाब उधाण वाए मां 16 तवा का सवाल पुछा थी त मांजी इहा एकड़ी ख्वाहिश आ तवा न जा सवाल जा जवाब दियो जी मां तवा का इलाही इलाही सवाल पुछी सका सो नेक्स्ट कॉल पे करे वठू था दिसु नेक्स्ट कॉलर केर मौजूद है हेलो जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: केर मौजूद है
1: ਰਿਦਾ
0: ਬਤੂਲ ਕਿਥਾਂ ਕਾਲ ਕਈ
1: ਅੱਛਾ
0: ਰਿਦਾ ਬਤੂਲ ਕੰਬਰ ਕਾ ਫੋਨ ਕਈ ਛਾਲਾ ਰਿਦਾ ਖੁਸ਼
1: ਆਯੋ
0: ਓਕੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਯੋ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਧੋ ਪਿਆ ਮਾਂ ਵੀ ਸਫ਼ਾ ਠੀਕ ਆਯਾਂ ਉਨ ਖਾਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਯੋ ਆ ਜੇਕੋ ਬੁਧਾਈਂਦੀ ਆਯਾਂ ਚਲੋ ਮੂੰਖੇ ਇਹੋ ਬੁਧਾਯੋ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜੇਕੋ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਅਚੇ ਦੋ नंढड़ी केतरन सालन जी आ 10 सालन जी अच्छा मुखे यो बुधाय ता तमा 10 सालन जा आयो ना पोई भी तमा वाईटी जी का लवली क्रीम आ ना वा इस्तेमाल करे सको ता जी ता घर में के चे जो पांजी अम्मी के चोजे का ता बुधाय थी हम
1: ता सठो आयो
0: ता बिलाई सठो आयो माशाल्लाह अल्लाह से ता के खुश रखे आई बियो के तो से याद कंदो जी थैंक यू तांजो मोहब्बत हुआ है केडन दोस्तन की याद कंदो रिदा
1: हेलो
0: आई लव यू टू रिदा थैंक यू सो मच सोनी नंढड़ी छोकरी 10 साल दी असन प्रोग्राम में शामिल थी आई नंढड़ी बारड़ी हुई तो मां सोचवाने ना का छाई सवाल पूछा सो बिल्कुल जी प्रोग्राम आहे वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वने तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स 52 साल की जी कॉल मुखा ड्रॉप थी वे माजर सो नेक्स्ट कॉल लिसन था के असिस्टेंट मौजूद आए हेलो जी अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: केर मौजूद आ
2: यास्मीन
0: बात कर रही है मीरपुर खास से
2: मैं आपका रोज शो सुनती हूँ लेकिन आपका कॉल तो लेती नहीं
0: हूँ नहीं यास्मीन मैं कोशिश करूंगी कि कॉल्स लूं ताकि ये जो लोग मैसेज के थ्रू शामिल नहीं हो पाते तो वो कॉल कर ले हमें
2: तो आपका रोज बहुत अच्छा होता है पूरा शो सुनती हूँ बिल्कुल खामोशी
0: अच्छा चलिए खामोशी से अगर आप शो सुनती तो आपको सारी चीजें पता होंगी कि मैं शो में क्या क्या बताती हूँ
2: वो तो बताती है लेकिन मैं मेकअप क्रीमें वगैरह इस्तेमाल नहीं करती ना मेरी बहन को बताया वो इस्तेमाल कर रही है
0: अच्छा चलिए ठीक है ओके
2: अच्छा लगा
0: जबरदस्त सवाल पूछूं यास्मीन आपसे सवाल ये कि मुझे बताएं 30 विटामिन्स के कैप्सूल जो है वो कौन से प्रोडक्ट के अंदर ऐड किए गए हैं
2: ये एच
0: वाइट एच लवली में चले मुझे और बताएं क्या कहना चाहेंगी ये कहीं मैंने तो आपकी हेल्प नहीं कर दी लोगों को ये लगेगा कि भाई देखे सिद्रा ने बता दिया यास्मीन को
2: आपको सुनती हूं वगैरह को मतलब इतनी तरजीह नहीं देती हूं सुनने से ना आपकी आवाज सुनती हूं आपका हंसना अच्छा लगता है
0: थैंक यू यास्मीन मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है कि एहसास होता है कि भाई
2: हां पता है क्या आप वो आपने वो गाना काफी दिन से प्ले नहीं किया
0: कौन सा
2: लड़की है यार
0: हां ये गाना आज लगाऊंगी मैं चले थैंक यू सो मच यास्मीन इतनी मोहब्बत देने के लिए और क्या कहेंगी आप
2: सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम और हंसती रहो हमेशा मुस्कुराती
0: रहो थैंक यू सो मच प्यारी बहुत शुक्रिया आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है कि एहसास होता है कि भाई वाकई दुनिया में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं और ये बात मुझे किसी ने कही थी कि अगर एक लड़की की लड़कियां तारीफ करें तो समझ लीजिए कि वो अपने जो है ना मतलब इस आरजी वाली फील्ड में वो कामयाब हो चुके हैं तो यस आई एम कामयाब इंसान ओके सो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं कॉलिंग नंबर है 0332132238 हाँ जी, मैं भी सोच रही थी कि इस लिंक में हमने कदम रखा है तो लड़कियों की कॉलिंग आना स्टार्ट हो गई है। हाय, काश सिर्फ लड़कियों की कॉलिंग आए। अरे बाबा छोकरा तव्हां कॉल कयो न, छोंदा कॉल कयो, लड़किन जी लॻे थी त यादि सुठी ॻाल्हि आहे। सो नेक्स्ट कॉल ॾिसूं कहिड़े रस्ते सां मौजूद आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, चले ये कॉल थोड़ी डिस्टर्ब करेगी हमें, सो हम इसे ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट कॉलर हम पिक करते हैं, देखें कौन मौजूद है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या मौजूद है? कुर्बान भाव खुश आयो, मां सोचा पई कुर्बान भाव ज़ाहिर ना थियो।
2: हाल वटी तो की लगे को थी।
0: अल्लाह, अज माने ता के भी रुवारी छियो कॉल।
2: हां यो बाबा के वास्ते ती जारो वास्ते नहीं है, मां फोन तो आमो रुस्तम घाट के लिए दे दो।
0: अच्छा, बियो को रेडी छियो कोई रेडी तो कौन भयो ने
2: नाना सा जने।
0: अच्छा अच्छा, मुखे बुधा था केड़ो प्रोडक्ट घणो पया
2: तो ता यो क्रीम इस्तेमाल करा है केड़ो ना डुपटा ता ताई कर 20 रुपए बढ़ाती कोनी जो
0: ना पो वठण वनो था तो दुकान वारो ताके किए दे तो जडी ताके नालो ही खबर ना है।
2: हां बिल्कुल, नालो सा जेल से निकल कोने बा पर्ची दे लिखी विंदा हो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। केड़न दोस्तन के याद कंदा?
2: हां सर, प्यारो दोस्त है खालिद लाशाही काठी का गुलाम रसूल परी वीर दादो खासली विक्यो खासली है मामो रुस्तम खान जी।
0: चलो चलो, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शामिल थियो। बा सोनो झंडो मरी खा शामिल थिंदो है। अच्छा, कॉलिंग नंबर है 0332132288। नेक्स्ट कॉल डिसम केयर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: केर मौजूदा? मुझा कने ठरी था पर माइंड आवाज होती।
1: सादिया,
0: सादिया किता फोन किया?
1: लाड़काया,
0: लाड़काणी का?
1: हां एती रियल है, उसकी मैं बात कर रही
0: हूं। अच्छा, उर्दू में बात करें, चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। सादिया बताएं कैसी हैं?
1: जी मैं ठीक हूं, आप बताएं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। कौन से प्रोग्राम सुन रही हैं पता है आप? जानती हैं, सुनती हैं?
1: सॉरी मैं लेकिन काम में बिजी होती है ना, कभी कभार सुन लेती हूँ।
0: चले, मुझे बताएं कि आप प्रोग्राम कभी कभार सुनती हैं?
1: हाँ मेरी बहन सुनती है ना, हैप्पी।
0: हैप्पी, अच्छा आप हैप्पी की सिस्टर हैं?
1: जी मैं उसकी बड़ी बहन
0: हूँ। ओके ओके, चले हैप्पी को तो फिर आप, जी
1: आपसे सवाल करना है।
0: जी जी पूछे, अल्लाह ही रहम करे।
1: ये के
0: हाँ
1: ये के मेरी शादी होने वाली है ना, इसलिए कह रही हूँ कि मैं और हैप्पी आपसे मिलने चाहते हैं।
0: चलिए फिर आ जाएं, कोई मसला ही नहीं।
1: मैं भी नहीं, शादी नहीं ना अभी।
0: तो शादी के बाद आएंगी हस्बैंड? चलिए ये भी ठीक है, ठीक है कोई मसला नहीं, जब आपका दिल करे तब आइएगा।
1: अभी नहीं, शादी के बाद आओ, मैं बात करूंगी आपसे।
0: वैसे आपकी शादी कब है? कब है आपकी शादी?
1: अभी पता नहीं, जनवरी महीने में।
0: तो ये जनवरी तो इतना दूर है भाई, आप आ जाए मिलने, ऐसी भी कोई क्या बात है?
1: अच्छा नहीं, मैं कह रही थी मैसेज बात करूंगी तो वो कहेंगे लड़का है, इसके लिए मैंने कहा मैं फोन कर देती
0: हूँ। चलिए चलिए ठीक है, और बताएं क्या कहेंगे, किसको सलाम देंगे, किसको याद करेंगे?
1: कोई ऐसा दोस्त है ही नहीं तो याद कर रहे थी, सुनती है उसको सलाम कह रही हूँ, कमरे में बैठी है।
0: चलिए चलिए ठीक है, सलाम उसको भी, और बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सादिया नाम था भाई लड़की का, बहुत अच्छी माशाल्लाह, और क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बोलूं मैं, मीम याद आ गई ये वाली, क्या ही बोलूं मैं। अच्छा चलिए, मैंने गाना रखा था वो तो खैर मैंने देखा तो टाइम इतना जल्दी गुजर गया कि गाना आप तो खैर प्ले नहीं हो सकेगा, तो हम इसी मामले में एक और कॉल पिक कर लेते हैं, ठीक है, क्या कहते हो? सड़ो था नहीं छोकरी जो कॉलिंग थी वैसे। Okay, so calling number 0332132288. Next call, hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, kahan maujooda?
1: Kiran Sakhar se baat kar rahi hu, Mehak.
0: Kiran?
1: Mehak.
0: Mehak, Sakhar se Mehak, Mehakti Mehak to nahi hai aap?
1: Iski?
0: Mehakti Mehak to nahi hai aap, kyunki Sakhar se Mehakti Mehak hume call karti thi, message karti thi.
1: कैसी हो आप?
0: मैं ठीक, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक ठाक है?
1: मैं
0: प्रोग्राम सुनती हैं आप हमारा महक?
1: जी जी बिल्कुल, रोजाना आपका प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करी है फिर आपने सोचा या फिर अभी बस सुनती हैं?
1: नहीं सुनती हूँ फिलहाल, तो इसी शहर में मिलता नहीं है तो।
0: सखर में भी नहीं मिल रहा? सखर में भी नहीं मिल रहे?
1: नहीं मिल रहे।
0: अल्लाह, ये तो बहुत मसले की बात है। चले मैं ना अभी ये आप सब लोगों के मैसेजेस पहुंचा दूं कि भाई सखर में, मीरपुर खास में, हर जगह अवेलेबल करा दें ताकि हमारे लोगों को आसानी हो। चले महक, मुझे और बताएं क्या करेंगे?
1: मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, आप इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, मैं सुनती हूँ वो बहुत प्यारी सी बातें करती हैं।
0: थैंक यू, आपसे कम ही प्यारी बातें करती होंगी, आप बहुत प्यारी हैं।
1: मैं आपका आवाज सुनती हूँ ऐसे लगता है मैं सुकून आ जाता है,
0: हवाओं में उड़ रही हैं। चले थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आप कॉल किया करें मेरे प्रोग्राम में जब भी मैं कॉल्स लूं।
1: हाँ आपकी भाई टाइम नहीं है
0: जी,
1: तो आपसे लगती ही नहीं है, इतनी ट्राई करते हैं आप।
0: आज मुझे लग रहा है कि लड़कियों का दिन है आज तकरीबन प्रोग्राम में।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न? अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 03013992836
9: मोहम्मद उमर गोरी 0319 1557724
10: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

कपड़न में और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। ओके जी, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं। और जी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। भाई मैंने आज आप लोगों के लिए कॉल्स वाला सेगमेंट रख लिया है, सो कॉल्स वाला सेगमेंट ऑन है और इसी के साथ साथ आप भी हमें कॉल करते जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ कॉल्स पर आकर आपने ना बहुत ही आसान आसान से सवालों के जवाब बताने, क्योंकि मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। और यहाँ पर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करते जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर कॉलों वाला सेगमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लास्ट वाला जो टाइम होगा उसके बाद हम कॉल्स बंद कर देंगे। तो कॉलिंग नंबर है 0332132128।

0: ओके जी, सो यहाँ पर एक कॉल है और देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, ताम बताया के रस से गुड मौजूद आयो। शकीला हैप्पी गर्ल
1: जी।
0: अच्छा, हैप्पी गर्ल कितना फोन किया?
1: लाड़ी
0: माँ सफा ठीक ताम बताया। हैप्पी गर्ल खुश आयो मजे में? अच्छा मुखे बुधाए प्रोग्राम बुधो पिया। तमां के ता प्रोग्राम जे बारे में सब खबर हुंदी ता वरी शौक सा बुधंदा आयो ईअं न?
1: जी जी।
0: सो तमां का सवाल पुछा?
1: जी बिल्कुल पुछो।
0: सवाल मां ता का यो पुछंदम त मुखे बुधायो त जेके जड़ी बूटियूं आइन उहे केड़े प्रोडक्ट में ऐड थियल आइन?
1: वाइटिश।
0: वाइटिश में ॾिस ईअं न कर न, ॾिस ईअं न कर न। अच्छा मूंखे ॿुधायो ॿियो छा चवणु चाहींदा? ॾाढो भलो कयव अला। अच्छा चलो चलो, का ॻाल्हि कोन्हे का, कोई ॻाल्हि कोन्हे का, कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदो? आवाज़ कटिजे थो, आवाज़ प्यालो करे वियो। ॾिसो था, ॾिसो था। जलवाए अपना। ओके जी, कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर 0332132128। नेक्स्ट कॉल ॾिसूं था, नेक्स्ट कॉलर केर मौजूद आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: केर असां जो गॾु मौजूद
2: आहे?
0: आवाज़ कटिजे थो थोरो, तव्हांजो नालो ॿुधाइजो पंहिंजो। अलीज़ा। अलीज़ा किथां? मीरपुर ख़ासि खां कॉल कई
2: आहे?
0: अलीज़ा साल आहे सफ़ा मज़े में, तव्हां ख़ुशि आहियो अलीज़ा? अच्छा अलीज़ा ॿुधायो, हाणे मीरपुर ख़ासि में मिलनि था प्रोडक्ट या अञा ताईं कोन अवेलेबल थिया
2: आहिनि?
0: इहा त ॾाढी ग़लति ॻाल्हि आहे, मिलंदा कोन त माण्हू वठंदा कीअं? चलो चलो अवेलेबल कराए वठूं था। मूंखे ॿुधायो त टॉपिक यानी कि सेगमेंट जेको आहे सो तव्हां खां सवाल पुछा। जड़ी बूटियूं कहिड़े प्रोडक्ट में ऐड थियल
2: आहिनि?
0: न बसि तव्हां पहिरियों सवाल सही हो, पहिरें खे लॉक कयो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन मां ख़बर पइजी वई त तव्हां गौर सां प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो। कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदो अलीज़ा? जी निदा ॻाल्हाईंदी छो ने?
2: हलो
0: खेर, तव्हां ॿुधायो निदा ठीकु आहियो? तव्हां छो न ॻाल्हाईंदा आहियो? अच्छा शर्म ईंदो आहे, इहो शर्म केसि ताईं ईंदो? चलो ॿियो छा चवंदव, जेको शर्मा ईंदो माण्हू मूंखे पाण खे सम्झ में ईंदो त इन माण्हू सां मां छा ॻाल्हायां हाणे? ॿियो कंहिं दोस्तनि खे यादि कयो या कुझु चवणु चाहींदा? जी चलो, थैंक यू सो मच निदा सां गॾु मौजूद असांजी दर्दे दिल ॾाढो दर्द अथसि। सो अॼु वाकई मुंहिंजी इहा हिकिड़ी ख़्वाहिश हुई त मुंहिंजे प्रोग्राम में या न इलाही सारी छोकिरियुनि जूं कॉल्स अचनि, उहा अॼु विश मुंहिंजी पूरी थी, यानी इन मां इहो साबित थिए थो त कॾहिं न कॾहिं तव्हांजूं ख़्वाहिशात पूरियूं थी वेंदियूं आहिनि। सो अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला। सो कॉलिंग नंबर आहे 0332132128। नेक्स्ट कॉल वठूं था, ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे। हलो वालेकुम अस्सलाम, केरु मौजूदु आहे?
3: सिर्फ़
0: हिकिड़ो चकर?
3: आजी प्रोग्राम कदें कदें था बुधो इन जे करे खती थी वने वरी वठदा से शाम
0: हिकरे चक्कर में ताजी क्रीम खत्म थी वई
3: रब टे जणा रंदा आयो
0: आई ली पो एक चक्कर में खत्म करी सडी सबनी
3: उनन के चो के बाराडी जा मानो लेपो दे रखे दो
0: उनन के चो पांजी पांजी वठो मुजी नहणो
3: यारे पांजी पांजी वठदा से
0: चलो केडन दोसन के याद कंदा
3: जी मुजो दोस्त अब्दुल जब्बार अफसर अली अमीर हमजा ताना तकरीबन जे के बुधन सदन के सलाम बताई को सिंधी कलाम तो बुधायो ना
0: सिंधी गानो हलायो था थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ता कॉल गई भई लेपो न जो क्रीम के थोड़ो सही तरीके से लगायो जे कुछ डिया ले अभी सही ओके सो कॉलिंग नंबर 0332132288 नेक्स्ट कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो आवाज चिच में तो अचे हेलो आवाज चिच में चोयो ओके सो नेक्स्ट कॉल वठू या कॉलर्स के हाने थोड़ो रेस्ट दियो यही वठू ता ये कॉल वठू ताला शु दिल ती चले हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम
0: केर मौजूदा
3: अच्छा हाल है केरा
0: अल्लाह ही कीरो
3: चवंदा आई चवंदा ता इन देना सुदरा जो बा बाकी मुके खबर कोने मा केरा
0: मुजी अल्लाह शु दिल चो ता ये कॉल वठा दिसो ता निकरी आया
3: अच्छा देन ठीक आयो
0: सफा ठीक ता मुदा ठीक आयो मजे में
3: अल्लाह जाए सन मुझे मन दुआओं लगी सई तां जी तां बताए
0: अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बदो प्या
3: पूर गाला सच कर रहा
0: है सच गलायो
3: ता के खबर मा तू गलाई न पुट हर बार आ गया सही न थ लगे का तो अलाइम थई वली को न फिल्म मा था के
0: एने थोड़ो मसलो होदो न शिकार पर तई आवाज कोन पहुंचंदो होदो
3: ना पुटो बिचरी इंडिया ना कोई यो इशू थी एंदो
0: हां सही सही सही बियो कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो अन्या ताई या न
3: बस वही देखो दायो मा वही तो यूज किया
0: चलो ठीक है केड़न दोस्तन की याद के छा चवन चाहिदा
3: बस पुटो मा ये चवन चाहिदो त जेको आ सो शाम मुजो ख्याल रखदा कयो
0: जी जी
3: गले में घणो
0: ओके ता भी पांजो ले सरो ख्याल रखना कयो
3: ओके बता बस ठीक है बस सब का फिर टाइम मुझे दोस्त भी आयो बहन भी आयो दिल के बाहर याद कियो
0: चलो थैंक यू सो मच कांजो सरो ख्याल रख जो प्यारो फारूक भासे से गट मौजूद हो शिकारपुर का कॉल कंदो आ है इन का अलावा बस हाने कॉलर्स के थोड़ो रेस्ट देऊं था असा भी थकी प्यासी कॉलर भी थकी प्यांदा कॉल ट्राई करे करे

0: अच्छा त चओ काल वारनि खे कमेंट में घुरा त ख़बर पए हुननि वीचारनि वटि बटणनि वारो मोबाइल आहे न, ॻाल्हि खे सम्झंदा कयो। बाक़ी जिन वटि आहे कॉमेंट त उहे वरी कनि था,
1: सम्झो था।
0: बाक़ी जेकी वीचारा नथा करे सघनि कॉमेंट, उहे छा कनि, उहे कॉल कनि। बिल्कुलु तव्हांजे लाइ कॉलियूं आहिनि। सो बिल्कुलु जी प्रोग्राम आहे वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड कयो वञे थो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां। तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो आहे ऐं तव्हां कहिड़े प्रोडक्ट जे बारे में चाहियो पिया त बाबा असां अॻिते हली लॻाईंदासीं, ऐं देर न कयो, वठो बाबा। ही तमामु प्रोडक्ट सुठा आहिनि जेके मार्केट में तव्हांजे लाइ अवेलेबल आहिनि। अगरि कोन था मिलनि त पोइ तव्हांखे नंबर ते राबितो करणो पवंदो, जेके नंबर मां हाणे तव्हांखे ॿुधायां थी, ठीकु आहे। नंबर ते तव्हांखे राबितो करणो आहे, ऐं नंबर आहे 03-12-50-25-907, ऐं ॿियो नंबर आहे 033-28-43-09। हाउ भाई, वात पटिजी विया माण्हू जा, एॾा सोणा थींदा त पोइ वात त पटबा नी। तव्हां बि लाज़मी इस्तेमालु कजो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। अॼु अञा कुझु छोकिरियुनि जी कॉल न लॻी, जीअं दुआ थी वई, असांजी निदड़ी थी वई, लुबी थी वई। इहे लकड़ियूं रहिजी वियूं।

किशोर भाई के ही गलत आ छोकरा करते आने सदा ही छोकरा गालाइंदा आहिनि अॼु छोकरनि ॻाल्हायो इलाही सुठो लॻो अला करे सदा ई ईअं थिए ऐं उन खां अलावा मोहम्मद ज़मान भाउ थैंक यू अरे चओ था हिन करे आउं कॉल नथो कयां तो असांखे मुंझाए थो छोकिरियूं अवां खां सवाल पयूं कनि ॾिसो न छोकिरियूं केॾियूं कॉन्फिडेंट आहिनि तव्हां बि पुछो नी तव्हांखे केरु झलियो आहे

सो भला जो तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर न आहे कयो, कंहिं छॾियो आहे तव्हांखे सफ़ाई, पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो बाबा। ओके जी, लुबी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहती सिडो जानी, क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ। आज तो बहुत मजा आ रहा है शो में, सब लड़स गर्ल्स की कॉल लग रही है आज तो, वाह क्या बात है। तमाम भी कयो हानी जवान मोहम्मद बचल चबानी भाई हमारे साथ मौजूद है भाईजान, हेलो। ऐसन कहते हैं पर्सनल नंबर दिनो दे जा जोकर नको। अच्छा फहद अली हमारे साथ मौजूद है, हेलो फहद भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक है। और हेंसी हमारे साथ सादिया, चलें सादिया आप भी कॉल ट्राई करेंगी, आपकी नेक्स्ट टाइम लग जाएगी। आमिर खान भाई सर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम वीआईपी आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वीआईपी आहे, मां भी हणंदो आहियां। चलें जी, थैंक यू सो मच, आप लगाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम ताकि खूबसूरत हो जाए बहुत ज्यादा।

तंज भी माना करे वनो था नी अज नसरुल्ला भाई कहते अज छोकरे रिकॉर्ड टोड़े छड़ियो बाबा ये ना मजण मुराद वाला हकीकत।

अच्छा मीर तारिक बलोच कहती है असां भी तवां सां गॾु आहियूं, थैंक यू सो मच नदड़ी असांजो प्रोग्राम ॿुधे पई नदड़ी कहती है ओके ओके अखलाक भाई हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू, लगे तो तव्हांखे कुझु सवाइ मज़ो अची वियो आहे।

अच्छा मूसा गोरी भाई, थैंक यू सो मच. दर्द दिल कहती हाय अल्लाह, आज मैंने चंदा जाने से बात की. सर मिली. अला शाबस आहे ॿिनि टिनि माण्हुनि खे जेके स्टार्टिंग खां वठी हिनमहिल ताईं कॉमेंट कनि पिया. अलाह तव्हांखे मतिलब अवॉर्ड ॾिनो वञे इलाही कॉमेंट्स करण जो. ईअं बि हुजे हा. अच्छा आमिर खान वहेसर, वालेकुम अस्सलाम. प्रोग्राम तव्हांखे पसंदि अची पियो, थैंक यू. तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो पिया ऐं गॾु गॾु वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट बि आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु कंदा जीअं तव्हांखे मुकमल ख़ूबसूरती मिली वञे. अच्छा हैप्पी गर्ल कहती सॉरी वो चले. हाँ कोई बात नहीं. अच्छा चाचा कहती आज फिर आपने निराश कर दिया. हाय चाचा आप खुश कब होते हैं.

घड़ी। अच्छा नवाज कोसो भाई हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। ओके सो बिल्कुल हमारे जाने का वक्त करीब आ चुका है, आप लोगों से इजाजत लेते हैं। जी जो गाना अज रेजी वया आहिनि सो तव्हां दिलि नंढी न कयो, बाबा सुभाणे फरमाइश कजो, तव्हांजी फरमाइश हलाई वेंदी ऐं पंहिंजो इलाही सारो ख़्यालु रखंदा। वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कंदा रहो जीअं तव्हांखे ख़ूबसूरती मिले सफ़ा वी आई पी वारी, ऐं तव्हां मर्द मायूं सभी हणी सघो था। सो मोकिलाणी नाहे सलामत, सलामत अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Binafi se kholyo vindo American News website ji dawa. मुहिदे सां अपने हरमुज के कंट्रोल बाबत ईरान जा घणा मुतालबा मञा विया आहिनि। हरमुज के उत्तर वारे रस्ते ते ईरान ए ॾखण वारे रस्ते ते ओमान जो कंट्रोल हूंदो। ईरान मंजूरी जो अमल मुकमल करे वरितो आहे। अमेरिकी इख़्तियारियूं अॼु मुहिदे जो ऐलान करे सघनि थियूं। जल्द अपना हरमुज खुली वेंदो। ॿी सूरत में ईरान के खतरनाक हमलन के मुंह ॾियणो पवंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टीवी इंटरव्यू में चयो आहे त ईरान ते ॿी आलमी जंग खां बि वॾो हमलो करण वारा हुआसीं, जंहिं जो ॿुधी ईरान फोन ते राब्तो करे मुआहदे लाइ चयो। अपना हरमुज जल्द न खुली त ईरान ते वॾो हमलो कंदासीं। ईरान जंग सबबि अमेरिकी हथियारनि जे ज़खीरे में वॾी घटिताई। दिफ़ाई मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम थार जा 80% इंटरसेप्टर्स ख़तम थी विया आहिनि। अमेरिकी ख़बरू इदारे CNN जी रिपोर्ट मूजिबि अमेरिकी अधु ज़खीरो इस्तेमालु थी चुको आहे। हथियारनि जी घटिजी वियल ज़खीरे ऐं अमेरिकी इतिहादियुनि ते ईरानी हमलनि जे ख़दशे सबबि सदर ट्रंप ईरान ते वॾो हमिलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। बरतानवी मीडिया मूजिबि बेदुरुस्त निशानो लॻाईंदड़ अमेरिकी मिज़ाइल ख़तम थी विया आहिनि। यमनी हुसैन पारां रेड सी में सऊदी बहरी ॿेड़े खे निशानो बणाइण जी दावा। हुसैन जे फ़ौजी तर्जुमान चयो आहे त रेड सी में सऊदी अरब जे तेल भरदार ॿेड़े खे मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। सऊदी जे बहरी नाकाबंदी बाद 8 बहरी ॿेड़नि खे समुंड में निशानो बणायो आहे।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल।

खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: आबन हरमज़ बाबति शुरूआती मुआदो अॼु थियण जा इम्कान शुरूआती मुआदे ते त आबन हरमज़ खे 60 ॾींहनि लाइ बिना फीस ते खोलियो वेंदो आहे। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट जी दावा मूजिब मुआदे सां आबन हरमज़ ते कंट्रोल बाबति ईरान जा घणा मुतालबा मञिया विया आहिनि। हरमज़ जे उतर वारे रस्ते ते ईरान ऐं ॾखण वारे रस्ते ते ओमान जो कंट्रोल हूंदो। ईरान मंज़ूरी जो अमल मुकमिल करे वरितो आहे। अमेरिकी इख़्तियारियूं अॼु मुआदे जो ऐलान करे सघनि थियूं। ईरान जंग सबब अमेरिकी हथियारनि जे ज़खीरे में वॾी घटिताई। दिफ़ा मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम थार जा 80% इंटरसेप्टर ख़तम थी विया आहिनि। अमेरिकी ख़बरू इदारे CNN जी रिपोर्ट मूजिबि अमेरिकी अधु ज़खीरो इस्तेमालु थी चुको आहे। हथियारनि जी घटिजी वियल ज़खीरे ऐं अमेरिकी इत्यादियुनि ते ईरानी हमलनि जे ख़दशे सबब सदर ट्रंप ईरान ते वॾो हमिलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। बरतानवी मीडिया मूजिबि बि दुरुस्त निशानो लॻाईंदड़ अमेरिकी मिज़ाइल ख़तम थी विया आहिनि। जमनी हुसैन पारां रेड सी में सऊदी बहरी बेड़े खे निशानो बणाइण जी दावा। हुसैन जे फ़ौजी तर्जुमान चयो आहे त रेड सी में सऊदी अरब जे तेल बरदार बेड़े खे मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। सऊदी जे बहरी नाकाबंदी बाद 8 बहरी बेड़नि खे समुंड में निशानो बणायो आहे। वालारियल कश्मीर जी ख़ुसूसी हैसियत ख़तम करण ख़िलाफ़ ऐं कश्मीरियुनि सां यकजहतीअ जे इज़हार लाइ योम इतिसाल मल्हायो पियो वञे। सिंध समेत समूरे मुल्क में मोदी सरकार जे फ़ैसिले ऐं कश्मीरियुनि सां एकीअ जे इज़हार लाइ रैलियूं ख़ासि तक़रीबनि जो बि अहतमाम कयो वियो। हिकु मिंट जी ख़ामोशी बि इख़्तियार कई वई। अॼु खां 7 साल अॻु 5 अगस्त 2019 ते भारतीय हुकूमत हिकु तरफ़ो क़दम खणंदे वालारियल कश्मीर जी ख़ुसूसी आइनी हैसियत ख़तम कई हुई। सदर आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो कश्मीरी अवाम सां बदीअ जो इज़हार जो मेहतसाल कश्मीर जे मौक़े ते सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त ॾखण एशिया में जटादार अमुन जो क़याम कश्मीर मसइले जे हल सां जुड़ियल आहे। भारत जा हिकु तरफ़ा क़दम आलमी कानून जी भञकड़ी आहिनि। अहिड़ा क़दम कश्मीर जे कानूनी हैसियत ख़तम नथा करे सघनि। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम जे इख़लाक़ी सियासी ऐं सफ़ारती हिमायत जारी रखंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त 5 अगस्त 2019 ते भारत कश्मीर जे आइनी ऐं कानूनी हैसियत तब्दील करण जी कोशिश कई। भारतीय क़दम आलमी कानून ऐं सलामती काउंसिल जे ठहराउ जी भञकड़ी आहिनि। ॾखण एशिया में अमुन इस्तेकाम लाइ कश्मीर मसइले जो हल ज़रूरी आहे। पाकिस्तानी हुकूमत ऐं क़ौम कश्मीरी अवाम सां गॾु बीठल आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट

साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर 03003385699।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: तव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
1: पानी मामलन बाबत कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास में पीपी मेंबर्स जो एहतजाज। इजलास में पीपल्स पार्टी MNA मीर मुनवर टालपुर और शाजिया तमरी सख्त एहतजाज करें चौथा जलालपुर कैनाल मामलों CCI में गौर हेठा है। अड़ा फैसला मुल्क के मफाद में ना पानी मामलों वे वफाकी वजीर मोइन वटू जलालपुर कैनाल वहन वे पंजाब के फैसले की अणसिधी रीत दिफा कदे सिंध के पैं मुकर हिस्से का पानी फराम किया है। सिंध जैसे भी इजाफी पानी की घुर कई है वफाक सिंध के मुकर कोटा का पानी दिनों है। कमेटी चेयरमैन पानी कोट सबब आबादगार सख्त परेशानी के मुंह दियन पाया हकीकत की बुनियाद से जायजो वरतो वो।

सिंधी आबादगारनि जलालपुर ऐं मराला लिंक कैनाल जो तामीराती कम फौरी तौर बंदि करण जो मुतालबो करे छॾियो। नवाब ज़ुबैर टालपुर जी सदारत हेठि सिंध आबादगार इतिहाद जे इजलास दौरान सिंध में पाणी जी खोट ते ॻणिती ज़ाहिर। ज़रात ते लागू कयल टैक्स 45 मां घटाए 15% करण जो मुतालबो। आबादगारनि चयो त 1991 वारे पाणी मुआदे जी भजकड़ी करे सिंध जे हिसे जो पाणी चोरायो पियो वञे। ग़ैर क़ानूनी जलालपुर कैनाल खे वहण ऐं मराला नलक कैनाल जी तामीर सिधो जे पाणीअ ते धाड़ो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां केफोर मनसूबे ते पंहिंजे हिसे जो 66% कम मुकमल करण जी दावा। क़ौमी असेंबली जे पाणी मामलनि वारी स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास में केफोर बाबति ब्रीफिंग। वफ़ाक़ी वज़ीर मुइन वटू चयो आहे त केफोर मनसूबे ते वफ़ाक़ जो रहियल कम हलंदड़ साल मुकमल थी वेंदो। सिंध हुकूमत केतिरो कम कयो आहे इहो उन खां ई पुछियो वञे। वापटा चेयरमैन जो चवणु आहे त खेनि 50 मेगावाट बिजली घुर्जे त पर सिंध हुकूमत अञा ताईं नाहे ॾिनी। मनसूबो मुकमल बि थियो त बिजली खां सवाइ कीअं हलंदो। वाटर बोर्ड जे सीईओ चयो त फंड मौजूदु आहिनि, उमीद आहे त सिंध हुकूमत 2029 ताईं कम मुकमल करे वठंदी। ईरान अपने हरमस बाबत अमान सां मुआदे में देर जो जिम्मेवार अमेरिका खे करार ॾेई छॾियो। ईरानी अख़्तारनि मूजिब अमान सां मुआदे में देर जो करण अमरीकी मुदाख़लत ऐं सदर ट्रंप जूं धमकियूं आहिनि। जेसि ताईं अमरीकी अमले जो ख़तरो बरक़रार रहंदो तेसि ताईं अपने हरमस बाबति मुआदे ते अॻभराई मुमकिन न हूंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जल्द अपने हरमस खुली वेंदो, ॿी सूरत में ईरान खे ख़तरनाक हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अपने हरमस जल्द न खुलियो त ईरान ते वॾो हमिलो कयो वेंदो। अपने हरमस बाबति शुरूआती मुआदो अॼु थियण जा इम्कान। शुरूआती मुआदे तहत अपने हरमस खे 70 ॾींहनि लाइ बिना फीस जे खोलियो वेंदो। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्ज्यूस जी दावा एक्ज्यूस मूजिब मुआदे सां अपने हरमस ते कंट्रोल बाबति ईरान जा घणा मुतालबा मञिया विया आहिनि। हरमस जे उत्तर वारे रस्ते ते ईरान ऐं ॾखण वारे रस्ते ते ओमान जो कंट्रोल हूंदो। ईरान मंज़ूरी जो अमल मुकमल करे वरितो आहे। अमरीकी इख़्तियारियूं अॼु मुआदे जो ऐलान करे सघनि थियूं। ईरान जंग सबबि अमरीकी हथियारनि जी ज़खीरे में वॾी घटिताई। दिफ़ाई मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाट जा 80% इंटरसेप्टर ख़तम थी विया। अमरीकी हाबरू इदारे CNN जी रिपोर्ट मूजिबि अमरीकी पेट्रियाट इंटरसेप्टर्स जो बि अधु ज़खीरो इस्तेमालु थी चुको आहे। हथियारनि जी घटिजी वियल ज़खीरे ऐं अमरीकी इतिहादियुनि ते ईरानी हमलनि जे ख़दशे सबबि सदर ट्रंप ईरान ते वॾो हमिलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। برطانوی میڈیا موجب بھی درست نشانوں لگائیندڑ امریکی میزائل ختم تھی ویا ہیں۔ یمنی حسین پاراں ریڈ سی میں سعودی بحری بیڑے کے نشانوں بنانے کی دعویٰ۔ حسین جے فوجی ترجمان چیو ہے تو ریڈ سی میں سعودی عرب جی تیل بردار بیڑے کے میزائل سا نشانوں بنایا ہے۔ سعودی جے بحری ناکابندی بعد 8 بحری بیڑن کے سمندر میں نشانوں بنایا ہے۔

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह बाजार।

स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायतें मौजूद इरशाद ऑटोस से पैंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 03201800003

0: कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15।

0: जी बीमारी आहे हेपाटाइटिस बी आ, हेपाटाइटिस सी आहे जिन बारन जो कद नंढो आ, कद नथो वधे पियो, या जिन जो मर्दन या औरतन जो मोटापो थी वयो आहे, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिए लाइव कॉल शामिल थी सघो था 0301-196-8051। डॉक्टर साहब खे असां ख़ुश आमदी चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में, महफ़िल में, मोहबत में, जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में आया आहिनि। डॉक्टर साहब अस्सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम साईं।
0: डॉक्टर साहब ठीकु आहियो? त बि ठीकु आहे
1: जी साईं, अलाह ताला जा अहसान।
0: डॉक्टर साहब अवां कहिड़े कहिड़े ॾींहनि ते वेहो था क्लिनिक ते, इन खां अलावा कहिड़े बीमारियुनि जो इलाज कंदा आहियो, ऐं अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति ॼाण ॾींदा?
1: औज़ु बिल्लाह मिन शैतान जीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहिरियां त सभु तारीफ़ूं उन रब पाक जो जेको असांखे जीआरे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो, सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। असांजो प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जेको रोज़ाना बर वक़्त टाइम ते निशर थींदो आहे, ऐं असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मेहरापुर शहर में हफ़्ते जा 6 ॾींहं, जुमो, छंछरु, आचरु, सूमरु, अंगारे जो ॾींहुं असांजी क्लिनिक ऑफ हूंदी आहे, यानी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। अरबा, ख़मीस, यानी 6 ॾींहं हफ़्ते जो असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मेहरापुर शहर में वधणपोटा पेट्रोल पंप जे साम्हूं कोचड़ी रोड ते मौजूदु हूंदी आहे। सुबुह जो टाइमिंग जे हवाले सां सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। इन खां अलावा अव्हांखे ख़बर आहे त जेके रोज़मर्रा जा जेके मसाइल हूंदा आहिनि, या जेके बीमारियुनि जे हवाले सां सिंधी ॾस हूंदा आहिनि, उहे बि अव्हांखे हिन प्रोग्राम जी तवसुस सां जेको आहे सो पहुचाईंदा आहियूं, या जेके नंढियूं या वॾियूं बीमारियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जी अवेयरनेस ई जेको आहे सो हिन प्रोग्राम जी शिनाख़्त आहे। अहिड़े तरीक़े सां कहिड़ी बि बीमारी आहे, चाहे पुराणो नज़लो ज़ुकाम आहे, दम आहे, जोड़नि जी बीमारी आहे, या संदनि जो सूरु आहे, या कुनरग जो सूरु आहे, जिगर जी जेके बि बीमारियूं आहिनि, हेपाटाइटिस ए, बी, सी, जेकी बि बीमारियूं आहिनि, उन खां अलावा जेको आहे सो गुर्दे जी जेकी पथरी आहे या पिते जी पथरी जे हवाले सां बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे, बवासीर जो कामयाबु इलाज। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं मौज़ूआतुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त जेके सो असां वटि क्लिनिक ते जी मां ॻाल्हि कई त हर क़िस्म जी बीमारी जा पेशंट्स ईंदा आहिनि, पर जॾहिं ॾींहनि में ॾिसंदा आहियूं त कुझु जेके ज़्यादा पेशंट्स जंहिं बीमारी जा ईंदा आहिनि, यानी उहा सम्झंदा आहियूं त हिन वक़्तु उनजी वबा फैलिजी रही आहे या उहा बीमारी ज़्यादा थी रही आहे, त उनजे बारे में अवेयरनेस ॾियणु असांजो कमु हूंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां हिन दफ़े बि असांजे क्लिनिक्स ते खोड़ सारा पेशंट ॿिया बि आहिनि, लेकिन चमड़ी जूं बीमारियुनि जे में बि हिकिड़ी ख़ासि बीमारी हूंदी आहे, सोरियासिस। सोरियासिस छा आहे, छो थींदी आहे, या कंहिंखे थींदी आहे, या जेकॾहिं थी वञे त उनखे जो कहिड़ो इलाजु हूंदो आहे, उनजे बारे में नंढी अवेयरनेस ॾिनासीं। जो सोरियासिस अहिड़ी बीमारी हूंदी आहे जो हीअ हिकु नंढी बीमारी नाहे, नाले में हिकिड़ी सोरियासिस जे नाले सां बीमारी आहे, लेकिन हीअ बीमारी 10-10 साल, 20-20 साल पेशंट खे जेको आहे सो रहंदी आहे, ऐं उहो मरीज़ जेको आहे सो दर बदर जेको आहे सो घुमंदो रहंदो आहे, यानी हर शहर में हर डॉक्टर वटि, लेकिन शिफ़ा जेको आहे सो उनखे घटि मिलंदी आहे। जेकॾहिं कुझु वक़्त जे लाइ उहो ठीकु थींदो आहे त दोबारा वरी उहा बीमारी तकलीफ़ उनखे थी वेंदी आहे, ऐं उहो पेशंट जेको आहे सो बार बार उन में जेको आहे सो मुबतला रहंदो आहे, ऐं तमामु उन में ॿियूं बि खोड़ सारियूं पेशंट्स खे तकलीफ़ूं खे मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे। ऐं हीअं जीअं त मां पहिरां ॻाल्हि कई त सोरियासिस हीअ हिकु क्रॉनिक ऑटो इम्यूनी डिज़ीज़ आहे, जंहिंखे असां जीअं कॾहिं क्रॉनिक असां चवंदा आहियूं पुराणियूं जेके बीमारियूं हूंदियूं आहिनि, ऐं ऑटो इम्यूनी डिज़ीज़ उहा हूंदी आहे जेके अंदरियां ई जेके पंहिंजा सेल्स हूंदा आहिनि जिस्म जा, जॾहिं डेथ थियण लॻंदा आहिनि या उन्हनि में फॉल्ट थियणु लॻंदो आहे त पंहिंजो ई जिस्म जेको आहे सो यानी हुन सां विहणु लॻंदो आहे, ऐं पोइ जेको आहे सो इम्यून सिस्टम जे नाकारा हुजण जे करे जेको आहे सो या जेके बि सेल्स हूंदा आहिनि डेथ थियणु लॻंदा आहिनि, ऐं पोइ उहा बीमारी वधंदी वेंदी आहे। अहिड़ी तरीक़े सां उन बीमारी में थींदो छा आहे, थींदो इहो ई आहे त जेको आहे सो यानी उहा जेकी बि चमड़ी हूंदी आहे खुर्दनी थी वेंदी आहे जिस्म जे कहिड़े बि हंध ते, यानी निर ते, पेट ते, अखियुनि जे मथां, ब्रियुनि जे मथां, हथनि ते, पेरनि ते, पुठी ते, मथे में, तव्हां ॾिसंदो त जेको आहे सो ईअं जीअं छिलर, मच्छी जा छिलर जेको आहे सो निकिरी ईंदा आहिनि, ऐं उहे जेके जेको आहे सो मथी जा मथ जे मच्छी जा छिलर हूंदा आहिनि बिल्कुलु उन्हनि वांगुरु जेको आहे सो थी वेंदा आहिनि ऐं पापड़ियूं ठही वेंदियूं आहिनि ॻाढ़ा चुटा निशान ठही वेंदा आहिनि अहिड़ा खोड़ सारा पेशेंट हिन वक़्तु बि असां वटि अंडर ऑब्ज़रवेशन आहिनि ऐं अलाह ताला जी महिरबानी सां ठीकु थी विया आहिनि ऐं वॾी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं अहिड़े क़िस्म जो पेशेंट जेको बीहंदा थी अचे ऐं ॾह ॾह वीह वीह सालनि में मुबतला हुजे ऐं उहो जेकॾहिं हिते ठीकु थी वञे ऐं पंहिंजा फीडबैक असांखे FM रेडियो ते ॾिए या असां वटि अची ऐं हिते इंटरव्यू रिकॉर्ड कराए वञे त हीअ हिकिड़ी वॾी ख़ुशनसीबी आहे जेको आहे सो असांजे क्लिनिक जी ऐं असांजे इलाज जी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते होम्योपैथिक इलाज सां जेकॾहिं पेशेंट अहिड़नि वॾनि बीमारियुनि में ठीकु थी वञे थो त नंढियूं बीमारियूं हुनजे लाइ कुझु बि कोन्हे वरी ॻाल्हि वरी बि असां हिकिड़ी कंदासीं त हिन सभु में रब ताला जी कर्म नवाज़ी आहे जेकॾहिं उहो किथां बि शिफ़ा ॾिए त जेको आहे सो बिल्कुलु शिफ़ा थी सघे थी अहिड़े तरीक़े सां ई जीअं मां ॻाल्हि कई त जेको आहे सो असां वटि इहे पेशेंट्स ईंदा आहिनि ऐं इहे अहिड़नि बीमारियुनि में जॾहिं ठीकु थी वेंदा आहिनि त पंहिंजा व्यूज़ रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि त हिकिड़ो व्यूज़ बि अवां ताईं पहुचाईंदासीं जेको उहो पेशेंट लाइव जेको आहे सो असांखे फेसबुक ते जेको आहे सो रिकॉर्ड करायो वियो ऐं उहो व्यूज़ इन ई बीमारीअ जे हवाले सां आहे अचो तव्हांखे बि जेको आहे सो हिन सां जेको आहे सो बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं
0: दोस्तो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि दोस्त जा व्यूज़ आहिनि जी डॉक्टर साहबु

0: खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरा पर एफएम 94 नजगर्लस डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरा पर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि

0: हलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगरलस डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ़ GFM 88

0: पाकिस्तान ऐं ईरान सरहदी वापार खे हथी ॾियण तोड़ी 24 कलाक सरहद खुलियल रखण लाइ सहूलियतूं वधाइण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। बहितर लॉजिस्टिक्स ऐं कस्टम्स तरीक़ेकार में बि हमाहंगी आणण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म सां ईरान जे वापार वारे वज़ीर सैयद मोहम्मद अताबिक जी सरबराही में 6 रुकनी वफ़द जी मुलाक़ात। शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान ख़ते में अमन लाइ पंहिंजूं मुख़लसाणियूं कोशिशूं जारी रखंदो। ईरानी सदर सां ताज़ोई ख़ते में अमन जे क़याम में पाक ईरान लाॻापन ते सुठी ॻाल्हि ॿोल थी। पाकिस्तान पंहिंजे बहितरीन पाड़ेसरी बिरादर मुल्क ईरान सां लाॻापन खे क़दर जी नज़र सां ॾिसे थो। उमेद आहे त पाकिस्तान ऐं ईरान विच में $10 अरब जे वितरफ़े वापार जो हदफ़ हासिल कयो वेंदो। ईरानी वज़ीर सैयद मोहम्मद अताबिक पाकिस्तान जी सिफारती कोशिशनि जी वाखाण कंदे चयो त ईरान पाकिस्तान सां इक़्तिसादी ऐं वापारी लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण जो ख़्वाहिशमंद आहे। ईरान अपना हरमुस बाबति ओमान सां माहिरे में देर जो ज़िमेवार अमरीका खे करार ॾेई छॾियो। ईरानी अख़्तियारनि मूजिब ओमान सां माहिरे में देर जो करणु अमरीकी मुदाख़लत ऐं सदर ट्रंप जूं धमकियूं आहिनि। जेसिताईं अमरीकी हमले जो ख़तरो बरक़रार रहंदो, तेसिताईं अपना हरमुस बाबति माहिरे ते अॻभराई मुमकिन न हूंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जल्द अपना हरमुस खुली वेंदो। ॿी सूरत में ईरान खे ख़तरनाक हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अपना हरमुस जल्द न खुलियो त ईरान ते वॾो हमिलो कयो वेंदो। अबना हुरमुस बाबति शुरूआती मुआहिदो अॼु थियण जा इम्कान। शुरूआती मुआहिदे तहत अबना हुरमुस खे 60 ॾींहनि लाइ बिना फीस जे खोलियो वेंदो। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्ज़्यूस जी दावा एक्ज़्यूस मूजिब मुआहिदे सां अबना हुरमुस ते कंट्रोल बाबति ईरान जा घणा मुतालबा मञिया विया आहिनि। हुरमुस जे उत्तर वारे रस्ते ते ईरान ऐं ॾखण वारे रस्ते ते ओमान जो कंट्रोल हूंदो। ईरान मंज़ूरी जो अमल मुकमल करे वरितो आहे। अमरीकी इख़्तियारियूं अॼु मुआहिदे जो ऐलान करे सघनि थियूं। ईरान जंग सबबि अमरीकी हथियारनि जे ज़खीरे में वॾी घटिताई। दिफ़ाई मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड जा 80% इंटरसेप्टर ख़तम थी विया। अमरीकी ख़बरू इदारे CNN जी रिपोर्ट मूजिबि अमरीकी पेट्रियाट इंटरसेप्टर्स जो बि अधु ज़खीरो इस्तेमालु थी चुको आहे। हथियारनि जे घटिजी वियल ज़खीरे ऐं अमरीकी इतिहादियुनि ते ईरानी हमलनि जे ख़दशे सबबि सदर ट्रंप ईरान ते वॾो हमिलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। बरतानवी मीडिया मूजिबि बि दुरुस्त निशानो लॻाईंदड़ अमरीकी मिज़ाइल ख़तम थी विया आहिनि। यमनी हुसियन पारां रेड सी में सऊदी पहिरीं ॿेड़े खे निशानो पाइण जी दावा। हुसियन जे फ़ौजी तर्जुमान चयो आहे त रेड सी में सऊदी अरब जे तेल बरदार ॿेड़े खे मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। सऊदी जी बहिरी नाकाबंदी बाद 8 बहिरी ॿेड़नि खे समुंड में निशानो बणायो आहे। पाकिस्तान पारां वलारायल बैतुल मुक़दस में इसराइली क़दमनि जी मज़म्मत। इसराइली कब्ज़े जे नापाक मक़सदनि खे क़बूल न करण जोॻो क़रार ॾेई छॾियो। फ़लस्तीन जी आज़ादी लाइ अरब ऐं मुस्लिम मुल्कनि खे गॾिजी कम करण ते ज़ोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार उर्दन में वज़राती इजलास खे ख़िताब कंदे चयो आहे त वलारायल बैतुल मुक़दस में इसराइली क़दम आलमी क़ानूननि जी भॼकड़ी आहिनि। हू मस्जिद अक्सा में इंतिहा पसंद इसराइलियुनि जे मुदाख़लत जी मज़म्मत कनि था। पाकिस्तान इसराइल पारां गैर क़ानूनी आबादकारियुनि ऐं फ़लस्तीनी इलाइक़नि ते कब्ज़े खे रद्द करे वरितो। गज़ा में इंसानी सूरतहाल ॾींहों ॾींहुं ख़राब थी रही आहे। माण्हू खुराक ऐं पाणी जी सख़्त खोट खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। ऐं कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बदतरीन ट्रैफ़िक जाम। शहरी सख़्त परेशान। सदर ओल्ड सिटी एरिया, एमेजना रोड, रीगल चौक, बोल्टन मार्केट, नेपियर रोड, न्यू एमेजना रोड, ज़ैनब मार्केट ऐं शाहीन कॉम्प्लेक्स वटि गाॾियुनि जूं कतारूं। आई चंडीगढ़ रोड, टावर, माड़ीपुर, माई कलाची रोड, शाहराह फैसल, कारसास, नेशनल स्टेडियम, ईसा नगरी, कयूमाबाद ऐं बहरिया कॉम्प्लेक्स, बतलवार ऐं अब्दुल्ला हारून रोड ते बि बदतरीन ट्रैफ़िक जाम। दिग रोड खां नीपा चौरंगी वेंदड़ रोड ऐं लियाक़ताबाद खां हबीब चौरंगी वेंदड़ शहरी बि सख़्त परेशान। वरे वज़ीर ट्रैफ़िक जाम जो नोटिस वरितो। IG सिंध ऐं एडिशनल IG कराची खे ट्रैफ़िक बहाल करण जी हिदायत। मुराद अली शाह चयो आहे त ट्रैफ़िक पुलिस जी वाधू नफ़री रोडनि ते मुक़रर करे रिपोर्ट पेश कई वञे। रोडनि तां गाॾियुनि जूं कतारूं ख़तम कराए ट्रैफ़िक जी रवानी हर सूरत में यकीनी बणाई वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और

0: गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो महरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
0: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 2196 851

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान ऐं ईरान सरहदी वापार के हथी ॾियण तोड़े 24 कलाक सरहद खुलियल रखण लाइ सहूलियतूं वधाइण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। बहितर लॉजिस्टिक्स ऐं कस्टम्स तरीक़ेकार में बि हमांगी आणण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म सां ईरान जे वापार वारे वज़ीर सैयद मोहम्मद अताबिक जी सरप्राही में 6 रुकनी वफ़द जी मुलाक़ात। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते में अमन लाइ पंहिंजूं मुख़लिसाणियूं कोशिशूं जारी रखंदो। ईरानी सदर सां ताज़ो ई ख़िते में अमन जे क़याम ऐं पाक ईरान लाॻापन ते सुठी ॻाल्हि ॿोल थी। पाकिस्तान पंहिंजे बहितरीन पाड़ेसरी बिरादर मुल्क ईरान सां लाॻापन खे क़दर जी नज़र सां ॾिसे थो। उमीद आहे त पाकिस्तान ऐं ईरान विच में $10 अरब जे बितरफ़े वापार जो हदफ़ हासिल कयो वेंदो। ईरानी वज़ीर सैयद मोहम्मद अताबिक पाकिस्तान जी सिफारती कोशिशनि जी वाखाण कंदे चयो त ईरान पाकिस्तान सां इक़्तिसादी ऐं वापारी लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण जो ख़्वाहिशमंद आहे। ईरान अपने हुर्मुज बाबत ओमान सां माहिदे में देर जो जिम्मेवार अमरीका खे करार ॾेई छॾियो। ईरानी अख़्तियारनि मूजिब ओमान सां माहिदे में देर जो कारण अमरीकी मुदाख़लत ऐं सदर ट्रंप जूं धमकियूं आहिनि। जेसिताईं अमरीकी हमले जो ख़तरो बरक़रार रहंदो तेसिताईं अपने हुर्मुज बाबति माहिदे ते अॻभराई मुमकिन न हूंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जल्द अपने हुर्मुज खुली वेंदो। ॿी सूरत में ईरान खे ख़तरनाक हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अपने हुर्मुज जल्द न खुलियो त ईरान ते वॾो हमिलो कयो वेंदो। अपना हुर्मुज बाबति शुरूआती माहिदो अॼु थियण जा इम्कान। शुरूआती माहिदे तहत अपना हुर्मुज खे 7 ॾींहनि लाइ बिना फीस जे खोलियो वेंदो। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्ज़्यूस जी दावा। एक्ज़्यूस मूजिब माहिदे सां अपना हुर्मुज ते कंट्रोल बाबति ईरान जा घणा मुतालबा मञिया विया आहिनि। हुर्मुज जे उत्तर वारे रस्ते ते ईरान ऐं ॾखण वारे रस्ते ते ओमान जो कंट्रोल हूंदो। ईरान मंज़ूरी जो अमल मुकमल करे वरितो आहे। अमरीकी अख़्तियारियूं अॼु माहिदे जो ऐलान करे सघनि थियूं। ईरान जंग सबब अमरीकी हथियारनि जे ज़खीरे में वॾी घटिताई। दिफ़ाई मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड जा 80% इंटरसेप्टर ख़तम थी विया। अमरीकी ख़बरू इदारे CNN जी रिपोर्ट मूजिब अमरीकी पेट्रियाट इंटरसेप्टर्स जो बि अधु ज़खीरो इस्तेमाल थी चुको आहे। हथियारनि जे घटिजी वियल ज़खीरे ऐं अमरीकी इतिहादियुनि ते ईरानी हमलनि जे ख़दशे सबब सदर ट्रंप ईरान ते वॾो हमिलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। बरतानवी मीडिया मूजिब बि दुरुस्त निशानो लॻाईंदड़ अमरीकी मिज़ाइल ख़तम थी विया आहिनि। यमनी हुसैन पारां रेड सी में सऊदी बहिरी बेड़े खे निशानो बणाइण जी दावा। हुसैन जे फौजी तर्जुमान चयो आहे त रेड सी में सऊदी अरब जे तेल बरदार बेड़े खे मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। सऊदी जे बहिरी नाकाबंदी बाद 8 बहिरी बेड़नि खे समुंड में निशानो बणायो आहे। पाकिस्तान पारां वालायल बैतुल मुक़दस में इसराइली क़दमनि जी मज़म्मत। इसराइली कब्ज़े जे नापाक मक़सदनि खे क़बूल न करण जोॻो क़रार ॾेई छॾियो। फ़लस्तीन जी आज़ादी लाइ अरब ऐं मुस्लिम मुल्कनि खे गॾिजी कम करण ते ज़ोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार उर्दन में वज़ारती इजलास खे ख़िताब कंदे चयो आहे त वालायल बैतुल मुक़दस में इसराइली क़दम आलमी क़ानूननि जी भॼकड़ी आहिनि। हू मस्जिद अक्सा में इंतिहा पसंद इसराइलियुनि जे मुदाख़लत जी मज़म्मत कनि था। पाकिस्तान इसराइल पारां गैर क़ानूनी आबादकारियुनि ऐं फ़लस्तीनी इलाइक़नि ते कब्ज़े खे रद्द करे थो। गज़ा में इंसानी सूरतहाल ॾींहों ॾींहुं ख़राब थी रही आहे। माण्हू खुराक ऐं पाणी जी सख़्त खोट खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। वालायल कश्मीर जी ख़ुसूसी हैसियत ख़तम करण ख़िलाफ़ ऐं कश्मीरियुनि सां यकजहती जे इज़हार लाइ होम एहतसाल मल्हायो पियो वञे। सिंध समेत समूरे मुल्क में मोदी सरकार जे फ़ैसिले ऐं कश्मीरियुनि सां एके जे इज़हार लाइ रैलियूं ख़ासि तक़रीबनि जो बि अहतमाम कयो वियो। 1 मिंट जी ख़ामोशी बि इख़्तियार कई वई। अॼु खां 7 साल अॻु 5 अगस्त 2019 ते भारतीय हुकूमत हिकु तरफ़ो क़दम खणंदे वालायल कश्मीर जी ख़ुसूसी आइनी हैसियत ख़तम कई हुई। सदर आसिफ अली सरदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो कश्मीरी अवाम सां वधी जो इज़हार। योम इस्तेसाल कश्मीर जे मौक़े ते सदर आसिफ अली सरदारी चयो आहे त ॾखण एशिया में जटादार अमन जो क़याम कश्मीर मसइले जे हल सां जुड़ियल आहे। भारत जा एक तरफा कदम आलमी कानून की भजकड़ी आन अड़ा कदम कश्मीर की कानूनी हैसियत खत्म ना कर सकन पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी सियासी ए सिफारती हिमायत जारी रख वजी अजम शहबाज शरीफ चाहिए तो 5 अगस्त 2019 से भारत कश्मीर की आइनी ए कानूनी हैसियत तब्दील करने की कोशिश कई भारतीय कदम आलमी कानून ए सलामती काउंसिल के ठहराव की भजकड़ी आन दखण एशिया में अमन ए इस्तेकाम लाए कश्मीर मसले जो हल जरूरी है पाकिस्तानी हुकूमत ए कौमी कश्मीरी अवाम से गड बीठल आन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फजाइया बहरिया के सरबराहन जो योम इस्तेसाल से वालारल कश्मीर के अवाम से यकजहती जो इजहार वालारल कश्मीर में भारतीय फौज के घेराव इंसानी हकन की संगीन भजकड़ियन ए भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के कब्जे से गणती जो इजहार वालारल कश्मीर में भारतीय फौज हथा शहीद थन्दड़न के भेटा पेश ISPR मूजिब कश्मीर मसले जो हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशन ए सलामती काउंसिल के ठहराव मूजिब होने घुर्जे भारतीय चिड़ दियारींदड़ बयान ए जारहानो अमल खिते में अदम इस्तेकाम जो सबब बणजी रो है अवाम ए पाक फौज कश्मीर की आजादी के जायज ए हकीकी जुदोजहद में गड बीठल है वालारल कश्मीर जो अवाम पेंजन हकन लाए मजबूती से बीठल है भारतीय कदम आलमी कानून सलामती काउंसिल ए कश्मीरी अवाम की उम्मीदन से हमलो आन पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है दखण एशिया में अमन इस्तेकाम कश्मीर मसले के हल से गंढियल है वडे वजीर वादल शाह सिंध जो अवाम कश्मीरियन से गड है भारत कदम वालारल कश्मीर की हैसियत तब्दील ना कर सकन सीनियर वजीर शजील नामेमन योम एहतसाल कश्मीर दखण एशिया की तारीख जो कारो ढी है भारतीय रियासती जबर ए इंसानी हकन जो भजकड़ियों कश्मीरी अवाम के जज्बे के कमजोर नथ कर सकन योम इस्तेसाल कश्मीर के मौके से सिंध के मुख्तलिफ शहर में रैलियों ए तकरीबों कराची में सूबाई वजीर सईद गनी की अगुवाणी में रैली गढ़ी वही हैदराबाद डिवीजन के ठट्टो सजावल बदीन टंडो मोहम्मद खान टंडो लियार मटियारी जिले के नंढन वडन शहर में रैलियों मीरपुखास उमरकोट ए थरपारकर जिले के नंढन वडन शहर में भी योम इस्तेसाल कश्मीर के मौके से रैलियों कढ़ी व्यू नवाबशाह सांगड़ ए नौशेरो फिरोज जिले के भी नंढन वडन शहर में कश्मीरियन से एक जो इजहार किया सक्कर खैरपुर ए घोटकी जिले में भी रैलियों कढ़ी व्यू लाटकाणो कंबर शिदाकोट कश्मोर एटकनकोट जैकबाद ए शिकारपुर में भी रैलियों कढ़ी व्यू सिंध काबीना पोरियतन के घट में घट उजरत 40,000 में वधाए 43,000 रुपया करने की मंजूरी दई छी मेहरान हाईवे से भी गाडियन का टोल उगाड़ने वे फैसले की मंजूरी वे वजीर मोहम्मद अली शाह की सदारत हेठ सिंध काबीना के इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के नई सिर जोड़ जक करण की मंजूरी भी डी वही पीपल्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेस लाए 2026-27 की बजट ए 2,72,30,00,000 रुपये की ग्रांट भी मंजूर दहशतगर्दी टोड़ एक्ट में तरमीम की मंजूरी दहशतगर्दी टोड़ एक्ट में तरमीम की मंजूरी डिनी वही

0: वतन जे दिफ़ा लाइ पाक फ़ौज सां कुलो कुले में मिलाए बीठल आहे। अॻिते बि कॾहिं आज़माइश जो वक़्तु आयो त हुर फ़ोर्स कंहिं बि क़ुर्बानी खां न किवाईंदी। सिंध सुके पई ऐं पंजाब वरी तकरारी जलालपुर केनाल में पाणी वाहे छॾियो आहे। अहिड़ा फ़ैसिला मुल्क ऐं वफ़ाक लाइ हानिकार साबित थींदा। पाणी मामलनि बाबति क़ौमी असेंबली जी स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास में पीपी मेंबर जो एहतजाज। इजलास में पीपल्स पार्टी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भैरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल के दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
3: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04372 आई 0242-46-0100।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
2: Whiteish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर, 03003385569।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ जीए एफएम 88 नेटवर्क ते।

पाकिस्तान के व्यापार बारे वजीर सैयद मोहम्मद अताबिक की सरबाही में छह रुकनी वफद की मुलाकात। शहबाज शरीफ है पाकिस्तान खत्े में अमन लाए मुखलसाणी कोशिशों जारी रखो। ईरानी सदर से ताजो ही खत्े में अमन के क्याम ए पाक ईरान लागापन से सुठी गाल बोलती। पाकिस्तान पैं बेहतरीन पाड़ेसरी ब्रादर मुल्क ईरान से लागापन के कदर की नजर से ऐसे तो उम्मीद है पाकिस्तान ईरान विच में 10 अरब डॉलर के बेतरफे व्यापार जो हदफ हासिल किया वो। ईरानी वजीर सैयद मोहम्मद अताबिक पाकिस्तान की सिफारती कोशिश की वाखाण कर ईरान पाकिस्तान से इक्तसादी ए व्यापारी लागापन के हथी देने जो ख्वाहिशमंद है। ईरान अबना हुर्मुज बाबत ओमान से माहदे में देर जो जिम्मेवार अमरीका के करार दे छो। ईरान इख्तियार मूजिब ओमान से माहदे में देर जो कारण अमरीकी मुदाखलत ए सदर ट्रंप जो धमकियों। जेस तीन अमरीकी हमले जो खतरो बरकरार रहो तेस तीन अबना हुर्मुज बाबत माहदे से अगभराई मुमकिन न होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है जल्द अबना हुर्मुज खुली वो ही सूरत में ईरान के खतरनाक हमलों के मुंह दियण पव। अबना हुर्मुज जल्द न खुलो तो ईरान से वो हमलो किया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।